पैण समझ ले, मन मैला नहीं होगा, मन निर्मल होगा। कान्हा जी कहने लगे, मैं ओही रे, मैं ओही रे, एकदम रो गया। सतगुरु कहने लगे, असी मैं दे चलीन नहीं होना, असी तू दे चलीन होना, तेरे बचन भी गुरु आशे अनुसार नहीं है। फिर जमाल हुसैन बोले, चुप वे अड़िया चुप, बोलन दी नहीं जावे अड़िया चुप, वे अड़िया चुप। सतगुरु कहने लगे, नहीं तेरे बोल भी गुरु आशे अनुसार नहीं ने, असी ते इस ढंग दे बचना नु ही थां दे सकदे आ। जब लग दुनिया रहिए नानक किछ सुनिए किछ कहिए। जगत दे जितने दिन तक जीवना है कुछ कहना है कुछ सुनना है, इसे लई अकाल पुरख ने कन बनाए ने, रसना बनाइए। ए नहीं कि खामोश हो जाना है, चुप हो जाना है, नहीं बोलना है। बोल के ही जगत नाल संबंध जुड़दा है, ते बोल के ही परमात्मा नाल संबंध जुड़दा है। ठीक ढंग नाल बोल सकिए, इस वास्ते जगत तो कुछ सुनदे भी रहना है, ठीक सुनदे भी रहना है, ताकि जगत दी होंद दा और ओदी असलियत दा पता चले। तो आपने बड़ी सावधानी दे नाल भगतां दी बाणी इकत्र कीती और उना उना भगतां दी जो गुरु ते सच दे आशे अनुसार सी, इस ढंग नाल आपने बाणी दा बोहत बाणी दा जहाज तैयार कराया और हरिमंदर साहब विच प्रकाश करा के ताबिया विच बिठाया भाई बुढ़ा जी। आपने उस दिन जो सिखा प्रति उपदेश कीता होए कि सतगुरु के शरीर हैं जो सब थान समय सब नादर सह हैं, ग्रंथ हृदय गुरु को एहो जानो उत्तम है सब काल रहे हैं। मेरे स्वरूप ते याते है धीरग साहेब जान अदायब कह हो, पूजो चंदन को केसर को घस धूप दुलखाए के फूल चढ़े हो। साहेब कहने मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना, क्यों मैं आज हां कल नहीं पर ए जुगो जुग अटल ने। मैं एक थां ते हां सारी थां ते नहीं पर शब्द दा प्रकाश सारी थावां ते, गुरु मेरे संग सदा है नाले, ए शब्द अंग संग होवेगा, शब्द गुरु हर वक्त हर थां ते अंग संग होवेगा, सर्वकाल होवेगा सर्व ठौर होवेगा। इस वास्ते मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना, महान करके जानना, निर्माणता दे पुंज ने पहले प्रकाश दे समय अपना मस्तक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अगों झुकाया और सिख जगत नूं यही प्रेरणा की थी कि मेरे स्वरूप ते याते है दीरग साहिब जान अदायब कहो, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। आप दी शख्सियत बारे, आप दी महानता बारे भट्ट इंज कहंदे ने, ओ भट्ट जो सारी जिंदगी संत दी पूर्ण गुरु दी टोल विच रहे पर ना मिले किते। आप स्वयं कहंदे ने, रहो संत हो टोल साध बैउ तेरे डिठे, सन्यासी तपस्वी मुखो ए पंडित मिठे, बरस एक हो फिरो कनोनो परचो लायो, कहते कहते सुनो रहत को खुशी ना आयो। पट कहंदे ने हर थां ते कथनी सी रहनी नहीं सी, कहनी सी रहनी नहीं सी, पर अज इस तरह दे पुरुष दे दर्शन होए ने जो रहनी दा मुजस्मा है ते कहनी दा सरदार है, कहनी दा सिरमौर है, कथनी दा सूरवीर है और करनी दा महाबली है, उसते अज दर्शन होए ने। तदी ते भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे कहंदे ने, जब लो नहीं भाग ले लारो दे, तब लो भ्रम ते फिर ते बौधायो, कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट हे नहीं रे पछतायो, तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जो गर्भ न आयो। वकत दी हकूमत ने वकत दी सता ने जेठ सुती चौथ नु लाहौर देच आप नु तरह तरह दे तसीये देख शहीद कीता, तत्ती तवी ते बिठाया, उबलदी देग देच उबालिया, गर्म गर्म रेता सीस देच पाया। कसूर इतना ही सी कि आप सत्यवादी सन, परंपरावादी नहीं सन, साईं मियां मीर जो आप दे अनन भगत सन,
ਜਦ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਤੱਤੀ

अंतिम समय आप जी दी रसना तो केवल यही बोल निकले, बाबा बका ले, बाबा बका ले। भाव नौवे गुरु नानक दी जोत बकाले दे छे, नौवे पातशाह दी जोत बकाले दे छे। दिल्ली ते बकाले दे छे काफी दूरी से, लिहाजा आपने बचना दे राही शब्दां दे राही गुरुगद्दी दे दिती और सिख जगत नूं कह दिता, बाबे दी तलाश, बाबे दे दर्शन बकाले विच करना। बकाले विच ही गुरु नानक देव जी महाराज दी नौवीं जोत दे दर्शन होंगे। गुरु नानक देव जी महाराज दी नौवीं जोत गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, आप गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे साहिबजादे सन और श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे दादा जी। गुरु हरकृष्ण जी महाराज जिथे शांति सबर ते ज्ञान जगत नू वंडदे रहे, उत्थे नामी गद्दी दा जिक्र भी सिख जगत नू दे गए, बाबा बकाले। बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र गुरु हर राय साहब जी ते गुरु हर राय साहब जी दे सपुत्र श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज ते बाबा गुरदित्ता जी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे सक्के भिरा पंज साहिबजादे सन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे। इस नाते च गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दादा जी ने, तो दादे ने पोतरे नूं गद्दी दित्ती है और पोतरे ने दादे नूं गद्दी दित्ती है। दरअसल ए गद्दी ते जोत है न के शरीर है। गुरु नानक दी जोत घर बदलती रही, पहला घर, दूजा घर, तीजा घर, चौथा घर, जिसनू महला पहला, महला दूजा, महला तीजा कहिए, हुण महले नावे दिच आई। हुण महल जेड़ा है नावा है, हुण टिकाणा नावा है, जोत ओही है। श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे मुखार बिंद तों जदे शब्द निकले ने बाबा बका ले, उस वक्त गालबन 26 साल हो गए सन बकाले देच भोरे देच रहिंदे आं गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे ज्योति जोत समान तो बाद आप माता नानकी ते सुपत्नी गुजरी जी नाल नानके पिंड बाबा बकाले आ गए, पर आप दी रहन सहन दी बिरती न्यारी, भोरे ची बैठे रहना। दरअसल इदा ए मतलब नहीं कि कोई जप तप करके सुरत उच्ची करनी सी, आप ते परम पुरख सन। बचपन तो ही भक्ति भावना अकाल पुरख तो लेके आए ने, लेकिन एक लंबे कम दी तैयारी लई आप नूं भोरे च बैठना पिया, क्यों कि आप नूं दिस पिया सी कि देश दा कल्याण, देश दी संस्कृति से ढंग नाल बचाई जा सकती है, देश दा धार्मिक पतन ना होवे ते देश दी धार्मिक दुनिया नूं केवल एक कोई जरिए नाल बचाया जा सकदा है कि देश दा कोई बहुत वड्डा संत महापुरख कुर्बानी दे अपना शीश भेट करे। तो तैयारी दे चुटे ने इस देश दे उत्तों, देश दी संस्कृति दे उत्तों अपना शीश निछावर करन लई, अपना शीश भेट करन लई। आप ब्रह्म ज्ञान दी मूर्ति ने, लेकिन फिर भी 26 साल तक भोरे दे च रहे ते जद गुरु हरकृष्ण जी महाराज दी रसना तो निकलिया बाबा बका ले, ता आपने दिल्ली दे चांदनी चौंक दे च अपने आप नूं कुर्बान कर दिता। इस तो वड्डा त्याग रूहे जमीन दे च किधरे भी देखण नूं नहीं मिलदा। आप सब कुछ ने छुप के बैठे ने, किसी ने प्रगट कर दिता है, कुर्बान हो गए, निछावर हो गए ने देश तो और धर्म तो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे आप दे आए शब्द बैराग दी मूर्ति ने, धर्म ते

नहीं, फिर भी दो प्रतीत हो रहन ते नाम भी दो पैगन, एक सूरज एक किरण। दो ना होंदे हुए भी दो दिखाई दे रहे ने, चूंकि दो दिखाई दे रहे ने तो नाम भी दो पै गए, सूरज और किरण। सागर ते लहर दो ना होंदे हुए भी दो दिखाई दे रहे, सागर ते लहर चूंकि दो दिखाई दे रहे ने, हैं ते नहीं, इस वास्ते नाम भी दो पै गए, सागर ते लहर। है ते सागर ही सागर, लेकिन सागर झलक रहे है लहरां विच। है ते सूरज ही सूरज, पर सूरज झलक रहे है किरणां दे विच। चूंकि दिखाई दो दे रहन, हैन नहीं दो, हैन नहीं। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ती, ऐसा वेदांती कहते ने, एको ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी चूंकि दो दिखाई दे रहे हैं, पर जब दो दिखाई दे रहे हैं ते नाम भी दो पै गए ने, फिर इसका विस्तार होया, फिर दोवां तो चार होए, एक सूरज दी किरण, एक किरण दा प्रकाश, एक प्रकाश दे जो प्रगट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ओ, अगर ये प्रकाश ना हो तो नहीं दिखाई देगा। मैं कई दफा अर्ज कर चुके हैं, अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है, अंधेरे ही ते हिमालिया पर्वत भी नहीं दिखाई देंदा, अंधेरे ही ते इतना वड्डा सागर भी नहीं दिखाई देंदा, जमीन तो कई गुणा वड्डा, फिर भी नहीं दिखाई देना। अंधेरे ते सारा शहर भी नहीं दिखाई देता, उचिया उचिया बिल्डिंगा नहीं दिखाई दे, अंधेरे ते जंगल भी नहीं दिखाई देते, सड़क भी नहीं दिखाई देंदिया, एक लख मनुख बैठा होवे एक भी नहीं दिखाई देता। इस वास्ते अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा भी नहीं है, बहुत वड्डा पर्दा, बहुत वड्डा पर्दा। अंधेरा सब कुछ नू ढक देंदा है, प्रकाश सब कुछ नू प्रगट कर देंदा है, प्रगट कर देंदा है। तो मैं अर्ज करा, जो कुछ भी प्रगट है ये आत्मा दे प्रकाश करके ही प्रगट है, उंज नहीं। एक परमात्मा, एक आत्मा, फिर आत्मा दा ही प्रकाश मन, मन दे प्रकाश करके ही तन है ते सब कुछ है। मैं इस प्रकरण नू कितना खोल सकांगे ते गुरु दी दित्ती हुई समर्था ठीक है, मैं छेड़ बैठा, पर जितनी गुरु दी कला वरतानगे, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शिश करनगे, इस मुख नुक्ते नूं मैं थोड़े सामने खोलण दी निमाणी कोशिश करांगा, क्योंकि आम ये दो पंक्तियां दोहराईयां जांदियां, खास कस समागमां दे, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। किरण की संपूर्णता उदो ही है जदे सूरज हो जाए, नहीं तो सीमित है। लहर की संपूर्णता उदो है जद सागर हो जाए, नहीं तो सीमित है। सीमित होना दुखदाई है, सीमित होना मनुख की चेतना बर्दाश्त नहीं करते। मनुख हर पक्ष हर पासों
ਵਿਸਥਾਰ

हे जगत गुरु, हे जगत दे मालिक परमात्मा, असी ते इस दौर दे इस कल युग दे कामी जीव हां, काम नाल भरे होया। प्रथम इस काम नूं अर्थां दे रूप दे समझना है। काम दे अखरी अर्थ ते ने कामना, पर कामनावां विच बहुत वासना है। इस वास्ते प्रियवाची शब्द बन गया काम वासना। कामना विच पदार्थ होवन तो काम लोभ, कामना सता दी होवे तो काम अहंकार। पर चूंकि कामना बहु वासना दी है, इस वास्ते काम वासना ते शब्द पर चलत हो गया। काम लोभ काम अहंकार ये कथनी विच ना आ सके, ये लेखनी विच भी ना आ सकया। काम दे अर्थ ने कामना, पर चूंकि कामना दी ज्यादा वासना है रूप है, यही कारण है कि काम दे अर्थ ही बन गए वासना, काम दे अर्थ ही बन गए रूप। रूपे कामे दोस्ती, रूपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंड। जैसे स्वाद सारा भुख दे च है, इतना भोजन दे च नहीं, तो वासना रूप दे ही आकर्षित होंदी है, रूप दी तरफ खिंच दिए। तो काम ते रूप दी दोस्ती बन गई। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखे है, वो कहिंदा है जब हुसन नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पर शैदा नहीं होता। दीवार देते जो फुल बने होया है, कोई बुलबुल उसते नगमे नहीं अलापती, नहीं चहचहांदी, नहीं गीत गांदी, क्योंकि तस्वीर है, हुसन दी तस्वीर है, हुसन नहीं, रूप दी छाया है, रूप नहीं। तो पंछी सियाणे ने छाया ते आशिक नहीं आंदे, छाया ते फिरा नहीं आंदे, रूप ते स्वप्न ते। मनुख ते किसे किसे थां पंछियां तो भी गया गुजरिया है, इते तस्वीरां ते भी मोहित है, चाहे चलदी फिरदी तस्वीर है जैसे कि फिल्मां, चाहे पत्थर दे उते उकरियां हुईयां तस्वीरां ने, चाहे तरह तरह दी इल्मे मसूरी है, चित्रकारी है, मनुख ते उसते भी फिदा होया पे। यही कारण है कि फैश तस्वीरां वालियां मैगजीन्स बहुत बिक रहे ने, बहुत पढ़े जा रहे ने, और उन्हां तस्वीरां नूं मनुख देखदा है, खूब देखदा है। दूर क्यों जाओ, मनुख दा ए वेग किसे समय इतनी शिखरता ते पहुंचया सी कि जमीन दे मंदिर भी काम दे बने, राम दे नहीं, जैसे के खजुराहे दे मंदिर, कोणार्क दे मंदिर, जगन्नाथ पुरी दियां पत्थर ते उकरियां तस्वीरां मूर्तियां। हैरानगी है, खजुराहे नूं देखण लई देश विदेश तो भीड़ पहुंचती है, और छोटा जिहा कस्बा, लेकिन चारों पासे फाइव स्टार होटल भी ने, एयरपोर्ट भी है, खूब जांदे ने
सैलानी और सैकड़े एकड़ विच फैले हुए इना मंदरां नू देखण लई। की है इना मंदरां विच कोई कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, किसे संत दी मूर्ति दे दर्शन करन जा रहे ने, किसे अवतार दे चित्र दे दर्शन करन जा रहे ने, कता ही नहीं। उत्थे जो मूर्तियां ने वो काम दिया मूर्तियां ने, वासना दिया मूर्तियां ने, मनुख वेखन जा रहे है, मनुख दे अंदर दी वासना इसनु मजबूर कर रही है। एक कोणार्क जांदा है, जगन्नाथ पुरी दियां बार दियां तस्वीरां देखदा है और खजुराहे दे मंदर देखदा है। इस तो स्पष्ट होंदा है कि मनुख दे वासना दे वेग ने मंदिर भी बनाए ते वासना दे बनाए, प्रार्थना दे नहीं। मंदिर भी बनाए ते काम दे बनाए, राम दे नहीं। हुन इस सदी विच इस युग विच ते दिल दिमाग दते एक काम ही छा गया। हर पासे इस दी विचार, इस दी प्रदर्शनी अखबारां विच, शायरी विच, फिल्मां विच, साहित्य विच, तरह तरह दियां तस्वीरां विच, और चारों पासे इतना काम दा प्रगटावा होवे, प्रचार होवे, तो कोई ध्यानी कोई साधक राम दा चिंतन करे इस युग विच कठिनाई है। अगर वो कर सके तो महान है। भगत रविदास जी महाराज नू इत्थे ही दुख तो के कहना पिया, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। इसी काम दे हड़ देच बह गया समुच्चा मगरिब, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, और बदकिस्मती है ये भारत जो सदियों तक धार्मिक देश रहा है और धर्म दी महिमा इत्थे बड़ी प्रगाढ़ रही है। अफसोस ए भी अज यूरोप दी नकल कर, मगरब दी नकल कर, पच्छम दी नकल कर, काम दे वेग दिच बह गया, काम दे दलदल दिच फस गया। और यही कारण है कि राम दा चिंतन घटदा गया, घटदा गया। हुन मोची ते कदम कदम ते बैठे मिलदे ने जुतियां गंढण वाले, किसे रविदास दे दर्शन नहीं आंदे। कपड़े बुनण वाले ते बहुत मिलदे ने, कबीर दे दर्शन नहीं आंदे। नाई ते बहुते ने, सैण किथे। कपड़ियां नू रंगण वाले ते बहुते ने, पर नामदेव किथे। चेतने महाप्रभु ए किथे। हुन कोई मीरा एक तारा लेके भजन दिश डुबी होई नहीं दिखाई देंदी। हुन कोई माता भाग कौर सुरबीरता दी मूर्ति नहीं दिखाई देंदी। समो जगत इसे ही वैण देच वह तो रहा है, इसे ही हड़ देच वह तो रहा है। और धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक देच इसी वेग दा जिक्र कर रहे ने। हे कामं नरक विश्रामं

0: धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फुने छंद देच इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की थी। और धन जाइए, सदके जाइए, कुर्बान जाइए गुरु अर्जन देव जी महाराज तो, जो बड़े बड़े बारीक विषयों को भी बड़ी बारीकी नाल छूंदे ने और विस्तार से प्रगट करते हैं। धन गुरुदेव जी महाराज दा वाक,
1: पंकज फाते पंग महामद गुंफिया अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया।
0: पंकज, पंक कहंदे ने चिक्कड़ नूं, पंकज पंक तो जमया, पंकज पंक ने जिसनों जमया, कमल पदम चिकड़ दी पैदाइश है। कमल दियां जड़ां चिकड़ देचने दलदल दिचने, पर स्वप्न महक खेड़ा ऊपर है, चिकड़ तो भी ऊपर, पानी तो भी ऊपर। कई दफा ऐसा होता है पानी घटता है, कमल दी बुलंदी भी घटती है। जो गगन नु चुम रहा सी धरती की तरफ डिगण लग पैंदा है, क्योंकि पानी घट गया है। पानी पदार्थ, पानी सुख पदार्थां दा, परिवारिक सुख पदार्थां दा, सुख धन दा, सुख मनुख गगन नु चुमन दी सोचदा है, लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिता है। वाकई धन संपदा पदार्थ यदि सब कुछ प्राप्त हो जान, परिवारक सुख पदार्थां दा सुख, धन संपदा दा सुख, सता दा सुख, ते जद कुछ होर सुख दी लालसा ना रवे, या ए पानी थोड़ा जिया घट जाए, तो फिर कमल थोड़ा जिया थले गिरता है, ऊंचाइयां थोड़ियां थले आउंदियां ने। महात्मा बुद्ध राजघराने तो ने, राजकुमार ने धन संपदा दी बुलंदी देखी सी, पानी बहुत सी, पदार्थ बहुत सन, ऊंचाइयां सन। इसी तरीके नाल स्वामी महावीर राजकुमार ने, राम राजा ने, श्री कृष्ण राजा ने, बहुत सारे भगत संत अगर पदार्थां दा जल भावें थोड़ा सी फिर भी आसमानों नूं छोया, तो इन्हां दे पुरबले पुन सन, प्रताप सी पुरबले पुन दा, पिछले जन्मां दे संस्कार उन्होंने इस तरीके नाल उन्हां नूं प्रेरित कीता ते उन्होंने बुलंदियां नूं छोया। आम साधारण मनुख दी गल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़े आलमाना ढंग नाल समझांदे ने। पानी घटिया, कमल थले गया, अचानक किधरे जोर दी बारिश हुई और सरोवर विच हड़ दा पानी आ गया, बहुत वेग नाल आया, बड़ी तेजी नाल सरोवर उपर उठिया। कमल संभाल नहीं सके अपने आप नूं, डूब गया पानी च। सिर्फ पानी च ही नहीं डूबिया, जिस चिक्कड़ विच इसदियां जड़ां सन उसे चिक्कड़ विच खुब के रह गया। मनुख पैदा होया काम तों,

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਅਗਨ ਕਿਹਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਨ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਇਹ ਪਰਬਲ ਅਗਨੀ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਕ੍ਰੋਧ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਕਾਮਨਾ ਧਨ ਦੀ, ਕਾਮਨਾ ਸਤਾ ਦੀ। ਸਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਲੋਭ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਲੋਭ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੋਭ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਹੰਕਾਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਲੋਭ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਭ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚਬਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ, ਸਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਲੋਭ। ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਅਹੰਕਾਰ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ। ਦਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਦਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧੀ
महामूर है, प्रेमी ज्ञानी है, स्याणा है, सूझवान है, सुचेत है। तदिति कहने ने क्रोध पैदा ही अचेत अवस्था तो आंदा है। उर्दू दी कहावत, गुस्सा बेवकूफी से शुरू होकर पश्चाताप पे जाके खत्म हो जाता है। क्रोध अगर एक मेंबर दे एक सदस्य दे घर दे एक प्राणी दे पैदा हो जाए तो सारा घर महाभारत दा अखाड़ा बन जाता है। घरेलू युद्ध, घर दे कलेश। पर यही परिवार जे पूरे दा पूरा किधरे क्रोधी हो जाए तो सारे महल्ले नूं महाभारत बना देंदा है। किधरे सारा महल्ला क्रोध दी अगन दे प्रचंड अगन दे जलन लग पवे तो फिर देखण दी चाया है ए पूरा महल्ला सारे शहर नूं जला के खाक कर दे। सारा शहर महाभारत बन जांदा है। इसी तरीके नाल एक मुल्क दा क्रोध किसे मुल्क प्रति जंग दा कारण बन जांदा है। और थोड़ा थोड़ा करके जब सारी दुनिया दा क्रोध यकजा होंदा है, कट्ठा होंदा है, उदों ही विश्व युद्ध होंदा है, वर्ल्ड वार हो जांदी है। एक सथल महाभारत नहीं, सारी दुनिया महाभारत बन जांदी है। बड़ा भारी विनाश होंदा है मनुखता दा। हर पासे कबरां ही कबरां, हर पासे शमशान ही शमशान। सिर्फ शहर दे एक कोने विच शमशान घाट नहीं, सारी दुनिया शमशान घाट बन जाती है। क्रोध ता ऐसी अगन है सारी मनुखता नूं जला के खाक कर देंदी है। क्रोध अगन विद्वान ऐसे भी कहते ने और प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है कि खूबसूरत फुलां दा बीज अत्यंत करूप ते कठोर होंदा है। पर इना कठोर और करूप बीजा नूं अनुकूल धरती मिल जाए, वातावरण मिल जाए, मौसम मिल जाए तो इसे कठोरता विचों कोमलता झलकन लग पैंदी है। इसे क्रूपता विचों सुंदरता डुलन लग पैंदी है। उसे निर्गंध देचों चारों पासे सुगंध फैलन लग पैंदी है। कठोर से बीज लेकिन इस विचों कोमलता निकल सकती है। शक्ति है तं क्रोध है, शक्ति है तं दया है। शक्ति है तं क्रोध है, शक्ति है तं प्रेम है। तो क्रोध एक बीज दी तरह है, कुरूप सही कठोर सही लेकिन बीज है। असी देखते हैं कि धार्मिक मंदिरां देच पूजा सथलां देच लोकी फुल अर्पण करते ने, पुष्प भेंट करते ने। अगर कोई तार्किक मनुख बारों गीटियां ते पत्थर चुक ले आवे, सतगुरां दे अगों भेंट करे, किसे मंदिर दे चढ़ावे, लोकी कहणगे मूड है, नादान है, ना समझ है, पागल है। पर वो तार्किक तर्क खड़ी कर दे
अगर फुल भेंट हो सकते ने तो पत्थर क्यों नहीं भेंट हो सकते, पुष्प चढ़ाए जा सकते ने तो एक कंकर ते गीटियां क्यों ने नजराने वजों पेश कीतियां जा सकदियां। उसकी तर्क का समाधान इंज करना पड़ेगा, पत्थर करूप है, पत्थर निर्गंध है, पत्थर कठोर है, फूल कोमल है, फूल सुगंधित है, फूल सुंदर है। सुंदरता नजराने वजों भेंट कीती जा सकती है, कोमलता सुगंध अर्पण कीती जा सकती है, कठोरता करूपता ते निर्गंध नहीं। फूल धर्म मंदरां दे देवतियां दे शिंगार बनदे ने, शोभा बनदे ने धार्मिक मंदरां दी, पर जो स्वयं फूल दी तरह हो जाए, अपने मन नूं फूल दी तरह कर देवे, परमात्मा दे कंठ दा ओहार बन जांदा है, उस दी दुनिया महान हो जांदी है, उते शिंगार बन जांदा है धर्म दा। जो कोमल हो गया है, सुगंधित हो गया है, और कोमल हो गया है, सुंदर हो गया है, सुगंधित हो गया है, क्रोध ही कोमल हो सकता है, क्रोध सुगंधित हो सकता है, क्रोध बहुत वड्डी सुंदरता अपने विचों पैदा कर सकता है, बीज है। मूर्ख इस बीज नो अपने कोल रख लेंदा है, सेना इस बीज नो गोड़दा है, बोंदा है, और बोना बस यही है, अपने मन नो प्रभु नो समर्पित करना, नाम भी जोड़ना, क्रोध नाल भरे होया यही मन दया नाल भर जांदा है, रब्बी स्वपन नाल भर जांदा है, अत्यंत कोमलता नाल भर जांदा है। इस नूं खत्म करन दा यही इलाज है, प्रभु चिंतन, प्रभु चिंतन, उस विच अपना मन जोड़ना। सार कितावली दा करता बहुत सुंदर कहिंदा है कि धर्म पैदा किवें आउंदा है, धर्म नष्ट किवें होता है, आखिर धर्म धर्म देच दया आ जाती है, धर्म देच संजम आ जाता है, धर्म देच संतोख आ जाता है, धर्म देच सारे दैवी गुण आ जाते ने, शील संजम आ जाता है। ये धर्म किस तरह पैदा होता है और ये धर्म किवें विनिष्ट होता है, नाश होता है, तो सार कितावली दा करता इंज लिखता है।

बहुत सुंदर एक ग्रंथ है, उस दिच मोह ते विवेक दी आपने जंग लिखी है। एक पासे राजा मोह है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इन्हां पंजां विषयां नूं जिहड़ी तरतीब दित्ती है, सब तो प्रथम मोह, फिर काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर अहंकार। सतगुरु ने इस तरह की तरतीब दित्ती है, मोह पहल। प्रबोध चंद्र नाटक दा करता, महान पंडित और महान दार्शनिक गुलाब सिंह जी महाराज निर्मले, वो भी मोह नूं राजा मनदे ने, बाकी सब इन्हां दी सेना है। एक पासे मोह राजा, एक पासे विवेक। मोह दे सेनापति ने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। विवेक दी भी सेना है शांति, प्रार्थना, ज्ञान, दया, शील, संयम इत्यादि। दोवें आमने सामने ने, और ग्रंथकार बड़ी सुंदर व्याख्या करता है। बैठा है मोह राजा उदास निराश, क्रोध आके पूछता है, राजन इतने दुखी क्यों, इतने बेजार, इतने निराश क्यों? देखदा नहीं शील ते संयम ने काम नूं मार दिता है, वासना नूं मार दिता है। और वो जो सामने खड़ा है ज्ञान, वो जो अपने नाल लई खड़ा है शांति, दूरदृष्टता, इसने खत्म कर दिता है अहंकार। वो देख सामने खड़ा है संतोख, उसने लोभ दे भी टुकड़े टुकड़े कर दिते ने। ऐसे शक्तिशाली सेनापति जिस राजे दे मारे जान उस दियां ते बावां टुट गईयां, हे क्रोध मैं इस वास्ते उदास बैठा, निराश बैठा, हुण ते हार यकीनी है, हार जावांगे, मर जावांगे, खत्म हो जावांगे। तो पंडित गुलाब सिंह जी महाराज लिखदे ने, क्रोध हो वाच, उस वक्त क्रोध बोलदा है, नहीं मोह राजन, उदास होण दी लोड़ नहीं, निराश होण दी लोड़ नहीं, मैं जो मौजूद हां, मैनू भेजो, मैं लड़ांगा, मैं युद्ध करांगा। मोह कहिंदा है, जिथे काम मर गया, लोभ खत्म हो गया, अहंकार दे टुकड़े टुकड़े हो गए, तू की करेगा? देखदा नहीं पिया सामने ज्ञान खड़ा है संतोख नू नाल लेके। विवेक राजा अपने नाल शांति दी सेना लई खड़ा है, शील खड़ा है, संयम खड़ा है, दूरदृष्टता खड़ी है, लंबियां निगाहां खड़ियां ने, लंबी सोचनी खड़ी है, की करेगा तू? उत्थे तेरी नहीं चलने। तो क्रोध बोलता है पंडित जी प्रबोध चंद्र नाटक दे इस तरह लिखते हैं, अंधकरों दृगवंतन को श्रुतवंतन को बदरो कर डारो, धृतवंतन को
सो अधीरे करो और चातर की मत दूर निवारो। अंधा कर देंगा जिन्हा दियां निगाहां बड़ियां लंबियां ने, जो दूर तक वेखदे ने अपने पैरां नूं भी नहीं देख सकनगे किथे खड़े हां, मैनूं भेज के ते देखो। अंधा कर देंगा जो पारदर्शी ने, पार तक देखदे ने और आर भी नहीं दिखाई देगा। जो लंबियां निगाहां रखदे ने, लंबी नजर रखदे ने, दूर दृष्टा रखदे ने, ए भी नहीं देख सकने कि किथे खड़े हैं, मैनू भेज के देखो। अंध करो दृगवंतन को, श्रुतवंतन को बदरो कर डारो। जिहड़े विचारक ने, सूझवान ने, पागल करके रख देंगा, हिला देंगा उन्हां दी सोचनी नूं, हिला देंगा उन्हां दी विचार शक्ति नूं। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। धीरजवान नूं, सबरवान नूं मैं बेसबरा करके रख देंगा, जल्दबाज बना देंगा। क्रोधी बहुत जल्दबाज होंदा है, जल्दबाज बहुत क्रोधी होंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बड़े सुंदर वाक जफरनामे दे आपने औरंगजेब नूं इंज लिखे है, चे खुश गुफ्त फिर दोसी है खुशतर जवां के जूदी बवद कारे आहिर मना। ऐ औरंगजेब, कितना सुंदर लिखे है तेरे हम दीन जनाब फिरदौसी ने, ईरान दा मायानाज शायर, महान सूझवान, दूरदृष्ट है। औरंगजेब चल, तू मेरे बोलां तो कुछ नहीं सिखिया, ना सिखना चाहना है, कम से कम फिरदौसी नूं पढ़ लेंदा, फिरदौसी दे बोल सुन लेंदा। चे खुश गुफ्त फिरदौसी है खुशतर जबां के जूदी बद कारे आहिर मना। कितना सोना उसने लिखे है कि जल्दबाजी करना शैताना दा काम है। तुम बहुत जल्दी की थी क्रोधी, बहुत जल्दबाज आंदा है तू, इसी जल्दबाजी दे प्यो नु कैद कीता, ब्राह्मण नु कतल कीता, भैन जहां आरा नु भी जेल दे पाया। और ऐ औरंगजेब, तेरी इस जल्दबाजी ते इस क्रोध ने पता नहीं कितने मासूमा दी जान ली। सरमद जैसे सूफी फकीर, फिर मेरे मासूम लाडले, फिर त्याग ते वैराग दी मूर्ति, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहादत, सब तेरे क्रोध दा कारनामा, सब तेरी जल्दबाजी दा कारनामा। तू रंचक मात्र भी सोचिया नहीं। पंडित गुलाब सिंह जी ठीक रखते ने, क्रोध कह रहे है सोचेगा ही नहीं मनुख, उस दे धीरज ही नहीं रहेगा, दूरदृष्टा ही नहीं रहेगी। जितना सियाणा होवेगा मूर्ख हो जाएगा। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। हित कारज नाए पिखे कबहीं, जिनके उर भीतर मैं पग धारूं।

आरों सुन ऐ मोराजन, मेरी करामात देख। मैं जिस हृदय च अपना पैर रख देना, वो अपना बिगड़दा होया कम भी नहीं देख सकेगा कि कितना बिगड़ रहा है, मेरा कितना नाश हो रहा है। वो अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं सुन सकेगा। ऐ मोराजन, तू मैनू भेज के देख। जिंदगी भर जो पड़िया होवेगा, साला बदी जो पड़िया होवेगा, एक छिन विच मैं बुला के रख देंगा, अनपढ़ बना के रख देंगा। क्रोध विच सड़िया होया मनुख ते अनपढ़ लगता है, क्रोध विच जलिया होया मनुख ते मूढ़ लगता है, क्रोधी ते शैतान लगता है। नहीं महसूस होता कि पढ़ा लिखा होवेगा, ये दार्शनिक होवेगा, ये फिलोसफर होवेगा, ये चातर होवेगा। पढ़ो जितनो खिन माए बेसारो, जीवन भर जो इसने पढ़े है, मैं एक सैकंड दिच भुला के रख देंगा, एक छिन दिच भुला के रख देंगा। क्रोध दी ए महान परबल शक्ति जिसनु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पावन पवित्र वाक संस्कृति श्लोक दिच इस तरह बयान करते हैं। हे कलमूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते। हे कलेश दी जड़, झगड़े दा मूल क्रोध, झगड़ा चाहे परिवार दे चाहे मूल क्रोध है, झगड़ा चाहे बाजार दे चाहे मूल क्रोध है, झगड़ा चाहे सारे शहर दे चाहे कौम दे चाहे मूल क्रोध है, ते झगड़ा चाहे सारे संसार दे चाहे विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वार है, मूल विच ते क्रोध है। हे झगड़े दी जड़, हे कलेश दा मूल, हे कल मूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते।

हे क्रोध तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर, जिन्हां दी वासना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी कामना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी तृष्णा अतृप्त रह गई है, जिन्हां दीआं इच्छावां अतृप्त रह गईआं ने, जिन्हां दीआं कामनावां अतृप्त रह गईआं ने, तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनती है, अतृप्त वासना गिले बनती है, अतृप्त वासना शिकवे बनती है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देती है, और इस सब कुछ फिर क्रोध नूं बर्बाद करता है। ये क्रोध तेरा वासा है विषयी जीवां दे अंदर। नरतं करोत जथा मरकटे, तू जिस दे अंदर वासा करदा है उसनू इस तरह नचांदा है जिवें मदारी बंदर नू नचांदा है। ऐ क्रोध तू बंदर दी तरह उस मनुख नू नचांदा है जिस दे अंदर तू प्रवेश कर जांदा है। अनेक सासं

है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र दिवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें, तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें, तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नु भी धोखा देना है, नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना कीजे जे का पार वसाए, लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग दे चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नूं बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नूं मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दित्ती है।

भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, करंग दे च मुंह मारना, हड्डी दे जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, ये लोभी दी मनोबिरति है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग के एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। एक स्वान दोए स्वानी नाल भल

0: चार
1: धान के रूप रहा करतार। हे करतार, धानक हो गया। धानक जो शमशान घाट पिच बैठ के उड़ीक कर देने कदों कोई लाश आवे, कफन मिले, भांडे मिलन, पैसे मिलन, कदों कोई लाश आवे, साडियां लकड़ियां बिकन, कदों लाश आवे, सानू मेहनताना मिले, साजो समिग्री मिले, जिसदी उपजीविका, जिसदी रोजी, जिसदी उड़ीक किसी दी मौत ते खड़ी है, और जो सवेरे तो लेके शाम तक रात तक इसे उड़ीक च रवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, ऐसे मनुख दी रूह भी मुर्दा हो जाती है, ऐसे मनुख दा इखलाक भी मुर्दा हो जाता है, ऐसे मनुख दा आचरण भी मुर्दा हो जाता है। शेख सादी ने एक बड़ी सुंदर कविता, शायरी गुलिस्तान विच कीती है। फरमान है उना दा, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त। मैथो इंसाफ दी गल पुछो, बद बख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है कि दर राह तश रंज दीगर कस अस्त। जिस दी राहत दूजियां दी रंज ते खड़ी है, जिस दियां खुशियां दूजियां दे रोने ते खड़ियां ने, जो दूजियां दी बर्बादी विचों आबादी लभदा है, जो दूजियां दी मौत विचों जिंदगी लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान विचों नफा लभदा है, जो दूजियां दी बेइज्जती विचों इज्जत लभदा है, जो दूजियां दे रोने विचों हासे लभदा है, इते बड़ा बदबख्त, बड़ा बदबख्त। सारा दिन ए उड़ीक होवे, ए सोचनी होवे, मरे किसे घर विच कोई मनुख, मौत होवे किसे दी, खत्म होवे कोई, लाश आवे, मैनू कपड़े मिलन, मैनू साजो समिगरी मिले, मैनू धन मिले,

जो शमशान घाट विच बैठ के सारा दिन मुर्दियां दी उड़ीक करदा है ते किसे घर विच मौत होवे इसकी उड़ीक करदा है नहीं, सारा संसार ही लोभियां ने शमशान घाट बना के रख दिता है और खुद बैठा है धानक दी तरह। कोई मरे मैनू कुछ मिले, कोई तबाह होवे मैनू कुछ मिले, मैनू कुछ मिलना चाहिदा है हुंदा है दूजा तबाह ते होवे, मेरे पल्ले कुछ पैना चाहिदा है खोया जांदा सब दा ते खोया जान दे। इस तरह हर मनुख धानक बन गया और हर मनुख ने संसार नू शमशान घाट बना के रख दिता। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस नू इस ढंग नाल भी बयान किया है, एक स्वान दोए स्वानी नाल भलके भौंके सदा बयान। एक कुत्ता दो कुतियां मनुख जैसे सवेरे उठता है इहदे नाल उठ बैठदियां ने, भौंकदा है कुत्ता भौंकदियां ने एक कुतियां, रात नूं जद सौ जांदा है वक्ती तौर ते एक कुत्ता ते कुतियां शांत होंदियां ने पर होंदियां इस दे कोल ने। जैसे सवेरे उठदा है कुत्ता भी उठ बैठा कुतियां भी उठ बैठियां, जोर दा भौंकना आरंभ कर दिता। इस भौंकण विच मनुख इतना बेजार होंदा है मजाले दी जबान तो वाहिगुरु निकले राम निकले अल्लाह निकले, मजाले जपजी साहब पढ़े ये मंदिर दी सुरत लवे गीता पढ़े या ये नमाज पढ़े ये कुरान दी तलावत करे, नहीं मुश्किल है। कौन है कुत्ता लोभ, कौन ने दो कुतियां आशा ते तृष्णा। थोड़ा जिया लोभ कुत्ता चुप होंदा है, आशा ते तृष्णा, तृष्णा जो मिल गया उसकी तृप्ति नहीं, तृष्णा ते आशा ये दोवें इतनियां जोर दियां भौंकदियां ने कि वक्ती तौर ते चुप कीते उस कुत्ते नू उस लोभ नू नाल भौंकना पैंदा है और पूरी उच्ची आवाज विच भौंकना पैंदा है। तो जब लोभ ऐसा भौंकना शुरू करे आशा ते तृष्णा भी भौंकण ये कल्ला मनुख की करे, ये फिर की करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, कूड़ छोरा मुठा मुरदार, झूठ दे छुरे नाल मुरदार नू जबा करदा है। मुरदार और झूठ दा छुरा प्रथम ते समझांगे जानना चाहांगे मुरदार की है। मुरदार गुरु नानक खुलासा कर देन बाणी दी व्याख्या बाणी कर दिए, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय गुरु पीर हमाता भरे जा मुरदार न खाए। पराया हक बस यही मुरदार है, अगर हिंदू है तो गऊ खा रहा है और मुर्दा गऊ, मुस्लिम है तो सूअर खा रहा है मुर्दा सूअर मरिया होया सूअर, पराया हक इते सूअर खा रहा है मुसलमान, इते गऊ खा रहा है हिंदू। भारत दी मनोहत

अजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्वे देव मानुखं पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वो गुणां दा सागर है, मनुख औगुणां दा सागर है। परमात्मा दे गुण नहीं गिने जांदे, मनुख दे औगुण भी गिणने औखे ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे। उंज ते अनंत औगण ने अनंत औगण ने, पर मूल कमजोरियां मूल औगण मनुख दे पंज ने जिन्हां नूं इस तरह गणित दे च लियाया जांदा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहणे ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां औगुणां नूं गुणा दे चुकना है। सतगुरु मोह तो आरंभ करते ने, मोह मेरा मोह मेरा, जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है, उसे पकड़ नु कहंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनु थोड़ी जी भी चोट लग जाए, खराश लग जाए, टूट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं, जिसका मोह नहीं, चाहे कल बर्बाद होंदा अज हो जाए, कल मिटदा अज मिट जाए, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा मासूम बच्चा बीमार पै गया है, सारा घर उदास हो गया है। मोह है, पकड़ है, मेरा है। लेकिन किसी देश विच किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पे है, कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं, वो मेरा नहीं, उस विच पकड़ नहीं। रत्ती जी वस्तु टूट भज जाए, नुकसान हो जाए, आह निकल जाती है। लेकिन बहुत बड़िया किधरे बर्बादियां हो जान अगर उस विच मोह नहीं, वो मेरा नहीं, तो कोई आह नहीं निकलती, कोई चीख नहीं निकलती,
कोई अफसोस नहीं आता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, आज नहीं तो कल संबंध टूटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। चाहे जो मेरा है वो टूटे या मैं टूट जावा, जिस विच मोह है वो खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जावा, रिश्ता तो टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। बस इसी टूटने का दुख है, इसी टूटने का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। पर कितनी भी पकड़ क्यों ना होवे, हथों ते छुटेगी ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों दी पकड़ ढिली होवेगी। जे पकड़ ढिली ना हुई तो जिसनु पकड़े है शायद वही मुर्दा हो जाए, वही ढिला हो जाए। आखिर ते संबंध टूटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करता है उतना ही मोह बच जाता है, और जितना मोह बच जाता है उतना ही दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये मोह व्यापक है, किधरे थोड़ा, किधरे बहुत, किधरे बहुत ज्यादा। प्रथम मोह परिवार का, सहजे सहजे जैसे जैसे पता चलता है ये मेरा पिता, बच्चे नू जैसे पता चलता है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत आता है मेरा है, मेरा है, मेरा है, उतना ही मोह बढ़ जाता है, उतनी ही पकड़ बढ़ जाती है। अगा चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे दा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह दा फैलाओ जितना वद्दा है, बस मनुख दा दुख भी उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है। मोह ग्रसा प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता, कारण जिस नाल मोह है, जिस दिते मेरे दी मोर लाई है, आखरे मोर मिटती है, जिस ते मोर लाई है वो भी मिटता है। बस इतों ही दुख है, इतों बेचैनी, इतों ही संताप शुरू हो जाते हैं। दो चार उदाहरणों राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का इकलौता बच्चा गालवन पांच छह वरिया का गुम हो गया, नहीं लभ रहा। मां दियां अखां हर पासे लभदियां ने, पिता दे पैर हर पासे दौड़ रहे ने, दिल हर वक्त याद कर रहा है, अखां छम छम हंजू पईयां वगंदियां ने। जीवन बहुत पीड़ा विच बतीत हो रहा है। जो मेरा सी, जिस विच मोह सी, बिछड़ गया। सहजे सहजे विछोड़े दा दुख
धीमा पैदा गया। क्यों? कहते समा सब कुछ नु पाट देंदा है, समा जख्मा नु भर देंदा है। बहुत समा लंघ गया, आज 5 साल हो गए उस बच्चे नु गुम होया। अचानक आज किसे ने दर ते दस्तक दिती और उसने आके आख्या, थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी उसनु मैं वेख्या। जिस हार दी तुसी गल कहंदे सी वो हार उसदे गल दे च है। आके देखो। खैर कुछ हो लिया, हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया, मां ने अखां विच बिठाया। विछोड़ा मिलाप दे सुख दे च बदलिया, हंजू हास्यां दे च बदले, मुरझाना खेड़े दे च बदलिया, दुख सुख दे च तब्दील होया। 5 साल दा विछोड़ा मां ने ममता डुल डुल के डोली, प्यो ने प्यार दे मानो सागर उमड़ा देते। वेख वेख के मां दियां अखां रजदियां नहीं, प्यो दा दिल भरदा नहीं। पालन पोषण इस तरह चल रहा है, दिन लंघ दे गए। बच्चा बहुत खुश, उसनु इतनी ममता मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। ओ भी खेड़े च, ओ भी खुशी च, मां नु बच्चा मिल गया, प्यो नु पुत्र मिल गया, उन्हां दी भी प्रसन्नता। पर अज किसे होर ने आके द्वार ते दस्तक दित्ती, आख्या जिस बच्चे नु तुसी ले आयो ये थोड़ा नहीं, थोड़ा बच्चा ते मैं वेख्या ओ हो रहा है। इस बच्चे ने उसी बच्चे दे गल चो हार उतार के आप पाया है, आओ थानू दिखाइए। जद जाके मां ने वेख्या, प्यो ने वेख्या, भुलिया बहुत नेड़े मेल खांदा सी, आवाज मेल खांदी सी, चाल ढाल मेल खांदी सी। मां ने सीने चलाया, प्यो ने उंगल पकड़ी उस बच्चे दी, कर लिया है। नजरा जिस हुण लैंदे बच्चे ते टिकियां, पहले लैंदे तो नजरा फिर गईयां। हुण अखां विच ते उस लई था नहीं सी, घर विच भी उस लई मानो था नहीं सी। धारा मोदी बदल गई, दूसरे बच्चे ते टिक गई। सारा प्रेम सारी ममता मां ते पिता दी इस नवे लैंदे बच्चे देते डुलन लग पई। पहला मायूस रहन लग पया, दुखी रहन लग पया। जैसे बूटे नु पानी ना देओ कुमलान लग पैंदा है, मासूम बच्चा ममता तो वांझा रह गया, प्यार तो वांझा रह गया, सत्कार तो वांझा रह गया, कुमलान लग पया। दूजा खिड़न लग पया, वधन लग पया, प्रफुल्लित होण लग पया। पहला लेंदा हुआ बच्चा इतना कुमला गया, इतना मुरझा गया, मुरझा के टूट गया, मिट गया। सुत्ता सुत्ता अब दी नींद सौ गया, हमेशा दी नींद सौ गया।
ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹੋਕੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਮੋਹ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਹੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠੀ ਮਾਂ, ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਗਮਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਰਗੜ ਘਾਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਪ, ਮੋਹ, ਦੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ, ਮੇਰੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਤੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਯਕਸਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੜਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਹ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮੋਹ ਸੰਪਤਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਕੜ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੌਧਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਬੌਧਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
मनुख दी पकड़, मोहनुख नाल घट के मनुख दी पकड़ धन संपदा नाल ज्यादा हो गई। पुत्र धोखा दे सकता है, भरा मुंह फेर सकता है, लेकिन धन धोखा नहीं दे सकता, मुंह नहीं फेर सकता। जैसे इसनु वरतांगे वरत सकते हैं, पर जैसे पुत्र नु वरतना चाहिए नहीं वरत सकते। जैसे पति नु आखी है या पत्नी नु कुछ कही है, लाजमी नहीं कि दोवे एक दूसरे की मनन। किसी थां ते नौकर भी इनकारी हो सकता है। तो इस सदी विच मनुख दा मोह धन नाल बहुत ज्यादा हो गया, पदार्थां नाल ज्यादा हो गया, और सहजे सहजे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, पदार्थ की खातर, धन की खातर, संपदा की खातर भरा कुर्बान किया जा सकता है, मां बाप छोड़े जा सकते हैं, पुत्र तो भी मुंह मोड़िया जा सकता है, और पत्नी ते पति दे विचकार दियां तलखियां पैदा हो सकती हैं, खलीज पैदा हो सकती है, दीवारां खड़ियां हो सकती हैं, और जद भी इन्हां रिश्तियां दे दराड़ देखो, दीवार देखो, दूरियां देखो, तो बहुगिणती दे कारण धन होवेगा। धन दी पकड़ ज्यादा, धन नाल मोह ज्यादा, और इतना ज्यादा इस देश देखते हैं धन की पूजा होती है। सब तो वड्डा त्योहार दिवाली, ते दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजन, धन की पूजा। कोई इस ढंग नाल अपने मां की पूजा नहीं करता, पिता की पूजा नहीं करता, पुत्रां की पूजा नहीं करता, पत्नी की पूजा नहीं करता, पति की पूजा नहीं करती पत्नी, लेकिन सारे मिलके धन की पूजा। तो अचेतन मन विच धन की पकड़ बहुत ज्यादा हो गई, और मूल कारण धन नु जैसा वरती है धन ना नहीं करता, धन नु जिथे रखी है, और जो इसका इस्तेमाल करिए धन कोई हील हुज्जत नहीं करता। तो इस सदी देखते ये पगड़ शिखरता ते है, बड़ी प्रबल है, इस तो थले है परिवार की पकड़, कुल की पकड़, मान मर्यादा की पकड़, और फिर अपने तन की पकड़, अपने रूप की पकड़, अपने जोबन की पकड़। मोह का एक बहुत वड्डा विस्तार है, और ऐसा जापदा है जैसे मोह नु नापना औखा है, इस वास्ते मनुख दे दुखां नु भी नापना बड़ा औखा है। तदी ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे मोह तू बहुत बलवान है, हे मोह तू बहुत शक्तिशाली है, तू अपनी जाल सारियां ते पाई हुई है, तू सारियां नु अपनी जाल दे फसा के रखे हुआ है। मोह नु घूमण घेरी भी कहिंदे ने, सियाने लोग जानते ने, खास करके दरियावां दे कंडे ते रहण वाले, जिथे पानी घूम रहा होवे लाजमी उत्थे खड्डा हुंदा है, चारों पासे दा पानी उसनु भरण लई दौड़दा है, और जैसे उस खड्डे नु पानी भरण लई दौड़दा है पानी दा घेरा बन जांदा है, वह घूमण लग पैंदा है, उसे नु कहिंदे ने घूमण घेरी। सियाने तैराक भी जानते ने, अगर कोई उस घूमण घेरी च फस गया है निकल नहीं सकता। हां उदों निकलता है जब शरीर दे चों प्राण निकल जाते हैं। जीव का मनुख जितना संघर्ष करता है निकलण का, उतने ही उस घेरी च फसता है, उतने ही डुबदा है, उतने ही गोते खांदा है, और जितना संघर्ष करता है उतने ही प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं,
और जब सारे निकल जाते ने प्राण तो यह भी घूमण के रिचा निकलता है। परिवार का मोह, धन का मोह, संपदा का मोह, जीवन का मोह, मान मर्यादा का मोह, ऐसी घूमण घेरी है। एक दफा जन्म दे लेके जद मनुख फसदा है तो मरण तो बाद ही उस घूमण घेरी चो निकलता है। और एक गल वखरी है, एक घूमण घेरी चो निकलिया है फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी, फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी। इस तरह अनंत जन्म घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है और मरदा है। इस तरह अनंत जन्म दुखां दे बतीत होंदे ने। अनंत जन्मां दा संताप मनुख दे कोल जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है। ठीक आख्या है, मोह घूमण घेरी है, मोह चक्र वांको नीर जारे वांको सीर है। भर्तरी ने ठीक आख्या है, मोह ऐसी घूमण घेरी है, इसी ची मनुख फस के रह जांदा है, इसी ची मनुख तड़प के रह जांदा है। और निकलना जींदे जी उस लई औखा हो जांदा है, कठिन हो जांदा है। लिहाजा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मोह नूं जो पहल दिती है, इत्थों ही मनुख दियां मूल कमजोरियां दा जिक्र करना आरंभ कर देने हैं। ये ठीक ही है, वाकई यही एक ऐसा चक्कर है, यही एक ऐसा घेरा है जिस विच फसदा है मनुख, निकलना कठिन हो जाता है। 80-90 साल का भी मनुख हो जाए, 100 साल का भी मनुख हो जाए, जीवन का मोह, संबंधियां का मोह, धन संपदा का मोह छोड़ता नहीं, मनुख होर जो है फसता है। जद कदी ऐसी विचार चले तो मैंने एक और बिरध माता चेते आउंदी है, गालबन 90 साल दी, कुबड़ा शरीर, हड्डियां दा ढांचा, बड़ी मुश्किल नाल मेरे कोल चल के आई, हाथ जोड़ के कहन लगी, गैनी जी मेरे लिए अरदास करो। तो मैं सोची पै गया, भया पुराना चोला, चोला पुराना हो गया जिंदगी दा, यही आखती होवेगी परमात्मा संभाल लवे। तो मैं आख्या दसो मां की अरदास करनी है। कहन लगी ओ सामने मेरा पड़पोता खेड़ रहा है, बस इसका व्याह वेख के मरा, अरदास करो। मैं आख्या नहीं मां, ये अरदास नहीं हो सकती, तू अपना व्याह वेखिया नहीं रजी, पुत्रां दा व्याह वेख्या नहीं रजी, पोतरियां दा व्याह वेख्या नहीं तृप्त होई, तो याद रख पड़पोतरे दा व्याह वेख के भी नहीं रजेंगी। ते मोह दा घेरा होर वड्डा हुंदा जाएगा, होर वड्डा हुंदा जाएगा, और मरण तो पहले ये घेरा टुटदा ही नहीं। धन ने और मनुख जो मौत तो पहले, प्राणा दे निकलण तो पहले मोह दे घेरे विचों निकल जाते ने, बड़े सूरबीर ने, मोह नू जित लिया है, मेरे नू जित लिया है, और जो मेरे नू जित लेंदा है, मोह नू जित लेंदा है, प्रभु उसनू गलवकड़ी च लांदा है और वो जीवन की बाजी वाकई जित लेंदा है, अपनी जिंदगी वाकई सफल कर लेंदा है।

अत बलना बहु मर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। केड़िया केड़िया नू? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक, फिलोसफर, विचारक, देवते मानुक, चंगे चंगे मनुख, स्याणे मनुख, गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट दे पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मंड ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च लै लिया, तू अपनी पकड़ च लै लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नूं भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाणे कहिंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां का ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पे, तां वी बंदरी बच्चे नूं छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा कुखारी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आउंदा, नहीं छोड़दी। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं, पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं, दिव्य शक्ति रखण वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक, फिलोसफर, गण गंधर्व संगीतकार, सारे इसकी लपेट दे च रहे, सारिया का मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए? फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक की अखीरली पंक्ति इंज फरमान कर देने,

जो करण हार करदार है, समूह ब्रह्मण्ड दे बनाण वाला, उसनू ही समझ कि मोह दा करता भी होई है। तू मोह नू सजदा ना कर, कृत नू सजदा ना कर, करते नू सजदा कर। अरे करण हार नमस्कारम, सजदा कर प्रभु नू, हाथ जोड़ परमात्मा दे अगों, अरदास कर और आख तेरी शरण शरण नानक जगदीश्वर है। ये जगदीश, ये जगत दे मालिक, तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण, बचण दा केवल यही उपाव है। सिद्धे रूप देच मौ नाल युद्ध कठिन है, औखा है। मनुख दी बिसात तो परे दी गल है, मनुख दी पहुंच तो परे दी गल है। मोह मेरा कदी कदाई रूहे जमीन दे मनुखी दुनिया च ऐसे फुल खिड़दे ने जिन्हां विच निर्मोह दी सुगंध होंदी है। मोह दी बदबो नहीं, निर्मोह दी महक। मोह दा अंधकार नहीं, निर्मोह दा चानण। मोह दी कठोरता नहीं, निर्मोह दी दया। निर्मोही दी दया सीमित नहीं आउंदी, मोह ग्रसे मनुख दी दया सीमित आउंदी है। अपने बच्चियां दी दया पड़ोसी दी बच्चियां दी नहीं। मोह ग्रसे मनुख नूं अपने बच्चे दे औगुण भी चंगे लगते ने, पड़ोसी दे बच्चे दे गुण भी नहीं चंगे लगते। अपना क्रोध बच्चा भी चंगा लगता है, पड़ोसी दा सुंदर बालक भी चंगा नहीं लगता। मोह ग्रसे दी दया बहुत सीमित, मोह ग्रसे दा प्रेम बड़ा सीमित, मोह ग्रसे दी समझ बड़ी सीमित। मोह ग्रसा सीमा दे जींदा है, उसका असीम नाल कोई संबंध नहीं। बड़े बड़े शक्तिशाली महाबली कहलाण वाले भी इस मोह दी सीमा दी कैद तो आजाद ना हो सके। मुगल सम्राट मुगल आजम जनाब जलालुद्दीन अकबर अधकड़ जी उम्र विच इसके घर औलाद हुई शाहजादा सलीम। पता नहीं कितने पीर फकीरां दी मजारां ते चढ़ावे चाड़दा रहा, चदरां चाड़दा रहा। धन गुरु अमरदास जी महाराज दे दरबार विच भी नंगे पैरी आया दर्शन करन लई। लेकिन दर्शन विच कामना सी एक बच्चे दी, भाग लगे समा पाके अधकड़ जई उम्र विच इस मुगल सम्राट दे घर सुंदर बालक दा जन्म होया, जिसका नाम सलीम रखा गया। काफी दिनों दा अकबर दा रुके होया मोह हड़ दी तरह वग उठे। और राज पाठ विच इतना ध्यान नहीं, बच्चे नाल खेडना खिडाना इस विच ध्यान बहुत है। डुल डुल के अकबर दी ममता सलीम ते पै रही है। चुकदा है चुमदा है रखदा है वेखदा है, खुश आउंदा है प्रसन्न आउंदा है। एक दिन सलीम गोद विच है, खादमा नौकरानी महिला का फर्श साफ कर रही है, पोचा ला रही है। अकबर खादमा नू कहिंदा है, खादमा सलीम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। विचारी खादमा नौकरानी की आखे, कहन लगी जहां पना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है,
सब तो सुंदर है। खादमा मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसी ने भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहन लगी, जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत हो गए, वो किस तरह हो सकता है। खुश होके प्रसन्न होके पंज मोरां खादमा दी हथेली ते टिकाइया। आखे खादमा तू ये काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनों भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नू भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं, जा लग के लिया हुक्म मन खादमा चल पई। सवेर दी गई, दिन ढलदिया वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल।

वसीते काफी समय तो समझी बैठे हैं सरा है, एक आउंदा है एक जाउंदा है, एक फूल खिड़दा है एक मुरझा रहा है, एक फल फूल चो निकल रहा है एक फल डिग रहा है, एक तारा उभर रहा है एक टूट रहा है। ये एक प्रभु की लीला समुची सरां देच ये आवागमन बने होया है और इत्थे सारे ही मुसाफर ने, असी भी मुसाफर, असी भी एक दिन रुखसत हो जावांगे। ये कोई नवी गलते नहीं, पर मैनू दुख है अफसोस है, ए ऋषि तू महान कार्य जो तप कर रहा सी तप क्यों छोड़िया, इस फोके संदेशे लई तू अपनी तपस्या क्यों छोड़ी, तपिया तप क्यों छाड़ियो, यहां हरख नहीं सो, ऐ तपीश्वर तू तपस्या क्यों छोड़ी। जितने सौखे ढंग नाल ए गल राजे निर्मम दी बयान कीती जा सकती है, जीवन विच धारना उतना ही कठिन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लखते जिगर अजीत सिंह जुजार सिंह कोल बैठे ने, गड़ी नू चारों पासे दुश्मना ने घेरे है, सतगुरु अजीत सिंह नू तैयार कर दें, और सिखा नू नहीं कहंदे किधरे इतिहास ए इल्जाम ना ला देवे अपने बच्चे बचा ले सिख मरवा ले, नहीं अजीत सिंह नू तैयार कीता है। और सतगुरु उसनू जो कुछ कहंदे ने अला यार खां जोगी ने इंज कलम बंद कीता है, ऐ मेरे बच्चे एक ख्वाहिश है मेरी तू पूरी कर, अजीत सिंह हथ जोड़ के कहंदा है गुरुदेव पिता तुसी सारियां दी ख्वाहिशां पूरी करन वाले, असी की थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, नहीं तू ही पूरी कर सकता है। हुक्म गुरुदेव पिता ताबेदार। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, बस इतना ही नहीं पूरी गल सुन, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें, होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हथ जोड़ के कहंदा है नाम का अजीत हूं जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा, स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने शहादत दा जाम पींदे आया, दोवें लखते जिगरां नू देखदे ने शुक्र करदे ने परमात्मा दा ईश्वर दा अकाल पुरख दा असीम प्रेम दी दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ना ताज दा मो ना तहत दा मो ना परिवार दा मो ना संसार दा मो, केवल प्रेम अकाल पुरख दा,
प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमित है प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है आसरा पकड़दा है अरजोई करता है अरदास करता है और उसकी याद विच डुबदा है मोह प्रेम बन जाता है। फिर कुछ भी चला जाए कुछ भी आ गया ना हरक ना सोग प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम।

0: हर हर हरे।
1: मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियां दे चों प्रबल कमजोरी अहंकार। अहं मैं हां मैं हां मैं हां, जिन्ने चिर तक ए मैं रहंदी है, ए अहं भाव रहंदा है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलदा रहंदा है, चलदा रहंदा है। ए जन्म ते मरण दा मूल है, ए जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, होमे एहा जात है, होमे कर्म कमाए, होमे एही बंदना फिर फिर जौनी पाए। होमे दा स्वभाव है, मनुख जितने भी कर्म करदा है अहंकार आशत, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है, अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म विच, और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण, इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा दे च पा देंदा है, बहुत लंबे गेट दे च पा जांदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वक् वक् जीवां विच अपने अपने दोष पाए जांदे ने, जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे विच दृष्ट रोग, मच्छी विच रसना दा रोग, और इसे तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। होमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ए रोग बंधन दा कारण बनदे ने, ए रोग दुख दा कारण बनदे ने, और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करदा है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थां दा अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसका अहंकार, किधरे इस जीवन का अहंकार, किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति दे जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ए अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इस दे आधार ते खड़ा होंदा है। जोबन धन प्रभ ताकै मद में, اہنس رہے دیوانہ دن رات پاگل دی طرح گھوم رہا ہے جوبن دی مستی وچ دھن دی مستی وچ اور ستا دی مستی وچ دھن جیب دے چوے یا من دی سوچنی دے چوے جوبن ونت ہوئے یا جوبن دی چاہ من دے چوے ستا دھاری ہوئے یا ستا دا چنتن اندر چلدا ہوئے دوہاں حالتاں پاگل ہو جاندا ہے ستا پاگل کر دین دیئے ستا دا چنتن بھی پگلا دیندا ہے جوبن پاگل پندی سیما تک لے جاندا ہے پر جوبن دا چنتن بھی پاگلوں والی حالت بنائی رکھتا ہے اسی طریقے نال دھن دھن جیب وچ ہے دھن گھر وچ ہے یا دھن سوچاں وچ ہے وچاراں وچ ہے منکھ تے پاگل ہوئے گا اس دا بہت وڈا پاگل پن دھن آشرت ہے جوبن آشرت ہے اور ستا آشرت ہے تبھی پادشاہ فرمان کر رہے نے جوبن دھن پربتا کے مد میں اہنس رہے دیوانا دن رات پاگل ہویا پھردا ہے اسے وچ اہنکاری اپنے آپ نو مہان سمجھدا ہے دوسرے نو تجھ سمجھدا ہے آپس کو دی رگ کر مانے اورن کو لگ مات منسا باچا کرمنا میں دیکھے دوزک جات ہر ایک نو چھوٹا سمجھدا ہے چاہے اگلا مہان ہوئے چاہے سویم تچھ ہوئے اپنے آپ نو مہان سمجھدا ہے اچا سمجھدا ہے سب تو اچا سمجھدا ہے ایرانی صوفی سنت حافظ فرمان کر دینے در محفلے کے خورشید اندر شمار ذراست جس دی محفل وچ خورشید اے سورج ایک ذرہ ہے ایک نکا جیا ریت دا ذرہ ہے در محفلے کے خورشید اندر شمار ذراست خود را بزرگ دیدم شرط ادب نواشد اس محفل وچ تو اپنے آپ نو آکھے میں وڈا میں وڈا میں مہان ہاں جتھے سورج بھی ایک نکے جیاں ذرے ورگا ہے اس دی بھی کوئی اوقات نہیں پر منک دی بھل منک دا اگیان اور جتنا پربل اگیانی ہوئے گا اتنا اہنکاری ہوئے گا ایک اردو دا مہان شاعر اس نو ایک ہور ڈھنگ نال وی بیان کر دینے علم کے جہول سے بہتر ہے جہول کا علم میں نے یہ درس پایا اپنی بصیرت سے گیان دی مورکھتا دے نالوں بہتر ہے مورکھتا دا گیان علم دی جہالت نالوں چنگا ہے جہالت دا علم اگر تھوڑا بہت کچھ سمجھے ہے عالم ہویا ہے ودوان ہویا ہے اور کئی گنا اس تو ود اہنکار نال بھر گیا ہے تو اہنکار اس گل دا ثبوت ہے جو علم ہے او عمل دیچ نہیں اور اے اہنکار مورکھتا تے کھڑا ہے علم کے جہول سے بہتر ہے جہول کا علم گیان دی مورکھتا دے نالوں بہتر ہے مورکھتا دا گیان اہنکار اگیان تے کھڑا ہوندا ہے گیانی بھی اگیانی سمجھو اگر अहंकारी है। भगत शर्मौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं,
0: हम बड़े कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे।
1: इत सारे भूल के पागल होए फिर देने कौन, हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत लई फिर दिए। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कवे नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहिंदे ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा हुंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी हुंदा है, क्योंकि औगुणा दे आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा। इह गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदे आया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसनों इतना बोझल नहीं करता। यह गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद, इक ना नाद ना वेद। एक हद नूं न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत का ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन, इक ना सुरत न सिद्ध, अकल सिर अखर का भयो न लहन। अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा है, और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप देच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेडे टेडे, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता, अगर सीधा चले तो उसकी चाल दा पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगां दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा दी निगाह थले आ जावां, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेडे टेडे, अस्त चरम बिस्टा के मुंदे, दुर्गंध ही के बेडे, तू है कि हड्डियां हड्डियां दे चढ़े होया मांस, मांस देते चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी, और की है तू। हड्डियां दा माण, जोबन जवानी दा माण, हड्डियां दा माण, मांस दा माण, मिंज दा माण और खलड़ी दा माण। इस तो इलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती है। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, कर्पूर बहुप सुगंधा परस मानक देहं मलीनं मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां फुलना जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नल छूंदियां स्पर्श करदियां मैलियां हो जांदियां ने। मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो, है कि दुर्गंध खून मिंज मांस खलड़ी अज्ञानी एवें तन दा अहंकार करदा है, जो बंदा अहंकार करदा है। फिर धन दा अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जा सब किछ तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन किथे उस दे वसाहल नाली सब कुछ प्राप्त होंदा है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उस दी देन है, ये दिमाग उस दी देन है, और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन कठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता, इसदा अहंकार अगा चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिदा है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठने लिए बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के ये प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलदा है, जगत तो मान मिलदा है, वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है। देखने दे चाया है धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है। हुण त्याग दा अहंकार सता कोल है, सता दा अहंकार सता दा त्याग कर देता है, हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है, पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नू बिठाण लई बनाने हां, अहंकार बैठ जांदा है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इसते भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नू दूसरे तुच्छ प्रतीत होंदे ने, अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचता है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हरनाकश ने मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा? दावा कीता सी नमरूद ने मैं हां खुदा, कौन होंदा है खुदा? अहंकारी अपने तो वड्डा किसे नु भी मनन नु तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं। सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके और हर एक दा माण मैं हो जावां, मेरे ते माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दी है। इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है तू है तू है तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां। ये जन्म मरण का कारण बन जाती है, तू है तू है तू है। ये जन्म मरण नू मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है, बूंद सागर दे चलीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते हैं

जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू तू है तू है तू है। इस वृत्ति ने इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है इसने भगवान दा रूप बना देता। मैं हां मैं हां मैं हां ये शैतान दा रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान दा रूप है जिसते रोम रोम देच जिदियां सारियां क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित भगवती नुमाइश हो रही है। परमात्मा ही प्रगट हो रहे है। श्री रविदास सही कह रहे ने जब हम होते तब तू ना ही अब तू ही मैं ना ही जद मैं सी तू नहीं सी हुण तू है मैं नहीं। ए तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान हौमें नावें नाल विरोध है दोए न वसे इक ठाए। ए मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते। या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां मैं हां। उदी सारी भज दौड़ उदी सारी किरिया उदी सारी तपस्या उदी सारी मेहनत ये किस कारण हो रही है। मैं पर विनम्र मनुख दा संत दा सब कुछ तू आश्रित है। तू ही है तू ही है तू ही है। उथे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जांदे ने। बस तू ही तू ही तू ही। एक आलम दा कहना है अज राह चनार अज राह चुनार कि सलामत न कुनत। इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके इतना आकड़ के ना चल। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनत। खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा दर पेश ना खुआनंद ओ इमामद न कुनत। जे किधरे इबादत करनू तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दियां मस्जिद दे च भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे च भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिस दा मिट गया है सारा अहंकार वो प्रधान हो सकदा है। सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभमान। जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया है मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनदा है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे च भी जो है था ना मिले। पर अहंकारी ते सिर ते बैठन दी कोशिश करदा है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति सारी सता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठदा है। कई दफा सिर हिल जांदे ने ते थल्ले गिरदा है। इस वास्ते कहिंदे ना गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहुंदा है एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जांदा है। अहंकारी शर्मसार होके रह जांदा है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है।
एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नू तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है, ये धार्मिक साधना नू भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने, आप बैठ जांदा है।

तकते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जांदी है। हे जनम मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनेक माया विस्थिरने। एह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने दी तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा है, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जित सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतना ही जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गए। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दित्ती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला दई है ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बनती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रंग तजंत सतरंग दृणंत अनेक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होंदा है, इसके दुश्मन ही बनते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहिंदे ने,

0: इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की थी।
1: फखर बकरे ने किया बस मेरे सिवा कोई नहीं।

ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उस दे हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान देच कोई रमण कर रहा हुए भ्रमण कर रहा हुए, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान देच भयानक जंगल देच मनुख तनहा रह गया हुए। असाध रोग है, किसे वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति देच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसदे कोल, बस परमात्मा दा नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हुण जे किधरे अंदरों निकले तू तू तू इते औषधि हो गई। मैं इते रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है, तू है, तू है, कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही, प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये फरमान ये वाक प्रेरणा दे रहा है, जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि दा सेवन कर।

कल्पना दे आधार ते दस आसमान दा रंग काला क्यों है। रंगश कबूद कर दिले अज पुरुष और आर साख्त अज बस के दूदे आहे मन अज आसमान गुजस्त। हे मेरे बादशाह मेरे तड़पे हिरदे चो जिहड़े होके निकले ने ओ जद आसमान तक पहुंचे ने उन्हां ने साड़ के काला कीता है। बादशाह ने गलवकड़ी च लै लिया। इतने काल दे भार थले तू जी रहे हैं। अकाल पुरख रहमत करन बख्शिश करन काल खत्म होवे अकाल प्रगट होवे। अकाल महा आनंद है अकाल वर्तमान है काल भूतकाल है काल भविष्य है और काल भविष्य की चिंता है। काल भूतकाल दियां यादां ने पर अकाल ना भूतकाल दियां यादां ना भविष्य दियां चिंतावां परम आनंद प्रगट हो गया अकाल प्रगट हो गया। भगत कबीर कहंदे ने दिन सुरैन वेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा कहत कबीर नर तिसे ध्यावो बावरिया संसारा। ऐ पागल संसारियो वाकई जो भूतकाल दियां यादां च बैठा है उन्हों किस तरह सियाणा आख्या जा सकदा है। जो भविष्य दियां चिंतावां दे च डुबिया होया है उसनू किवें सियाणा आख्या जा सकदा है। सियाणा ते ओ जो वर्तमान दे जी रहा है अकाल दे जी रहा है काल दे च नहीं। अकाल दे जीण वाला काल दियां सारियां फाइयां नूं तोड़ के रख देंदा है काल दे जाल नूं तोड़ के रख देंदा है। तदी ते सतगुरां दी बाणी फरमान कर दी है काल जाल जम जो हो न साके सच का पंथा ठाठ्यो। इसे नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करदे ने अकाल है अजाल है। हे प्रभु तू अकाल है तेरे उत्ते काल दा जाल नहीं है। और मिट जांदा है समाधि दे समा खो जांदा है काल। समस्यावां ते भविष्य दियां ने समस्यावां ते माजी दियां सन तो यादां समस्या समस्यावां दी यादां कुछ भूतकाल नाल संबंधित है कुछ भविष्य नाल संबंधित ने। मिट गईया सारिया समस्यावां क्योंकि वर्तमान एक क्षण समाधि। या मनुख समस्या च जीवदा है या समाधि। समाधि अकाल है समस्या भूत है समस्या भविष्य है। समाधि अकाल है अकाल दा चिंतन समाधि लीन कर दें अकाल दी याद काल नु मिटा के रख देंदी है। अकाल दा चिंतन सच दे मार्ग ते चलना है और सच तक पहुंचना है। काल जाल जम जो हो न साके सच का पंथा ठाठ्यो।

ता छूट गई संसारी काम दा ईंधन क्रोध दा ईंधन के थल्ले बाल। जैसे जैसे तू ज्ञान दा गुड़ पांदा जाएगा ध्यान दा महुआ पांदा जाएगा और जैसे जैसे ते तू सुर ते शब्द नो एक करदा जाएगा काम सड़दा जाएगा क्रोध सड़दा जाएगा आखिर ईंधन ही ते जलदा है। तो काम ईंधन है जलेगा क्रोध ईंधन है जलेगा। काम क्रोध करके जिंदगी चल दिए ईंधन करके जिंदगी चल दिए अग करके ये अग खत्म होवेगी क्योंकि ईंधन उतने चिर तक ईंधन है जो कारामद होवे। ईंधन उदों बर्बादी बन जाता है जब अग मकान नू लग जाए दुकान नू लग जाए साड़ के राख कर देवे। काम क्रोध दो किए जलेता छूट गई संसारी सड़ गया क्रोध सड़ गया काम। वो जो ज्ञान दा गुड़ सी वो जो ध्यान दा महुआ सी वो ऐसा पकया उदे चो निकली शराब नाम दी उदे चो निकली शराब प्रभु दे सिमरन दी। तो पुछिए कबीर इस शराब बनानी किस तो सीखी कौन सिखांदा है। इस तरह दे शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज ते भगत कबीर दे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बहुत सारे ने। प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मद माता उचक न कब हो जाई। ए समझ गुरु तो लई है और जिस दिन दी ये शराब पीती है और बाकी शराब पीण नू जी नहीं करदा राम दा रस आउंदियां ही काम दा रस मिट जांदा है राम दा रस आउंदियां ही क्रोध खत्म हो जांदा है राम दा रस आउंदियां रोम रोम दे चों लोभ निकल जांदा है जीवन अमृतमयी हो जांदा है। और जिंदगी जद अमृतमयी हो गई है तो पहचान के बोल अमृतमयी हो जांदे ने दृष्टि अमृतमयी हो जांदी है। जहरीले बोल दसदे ने जीवन जहर है ये फिक्की दृष्टि दसती है ये जहरीली निगाहां दसदियां ने जिंदगी जहर है। जहर नु अमृत बनाण दी जाच जे आ जाए भगत है पर जे अमृत नु जहर बनाई जा रहे है तो फिर ये संसारी है मूड है नादान है। कुदरत ने एक ऐसा नियम बनाया है अमृत जहर बन सकती है और जहर भी अमृत बन सकता है। शायद इसे वास्ते डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कह दिता जो जहर हला हल है जो जहर हला हल है वही अमृत है नादा मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। जे किधरे तेनू पीण दा ढंग आ जाए तो काम रस भी राम रस हो सकता है ते जे तेनू पीण दा ढंग नहीं आया तो राम रस भी काम रस दे बदल सकता है। जहर भी अमृत हो सकती है अमृत भी जहर हो सकता है अगर तेनू पीण दा ढंग नहीं आया। संखिया जहर है पर हकीम मार के उसनू कुश्ता बना देंदा है अमृत। अंगूरां दा रस अमृत है गन्ने दा रस अमृत है पर एक कलाल तरका के उसनू शराब बना देंदा है कौड़ा बना देंदा है। मिठे नू कौड़ा कीता जा सकदा है कौड़े नू मिठा कीता जा सकदा है अमृत नू जहर बनाया जा सकदा है जहर नू अमृत बनाया जा सकदा है। जिसने जहर नू अमृत बना लिया संत और जिन्हें अमृत नू जहर बना लिया दुष्ट संसारी। तो ये दो तरह की जिंदगी मिलती है जगत दे जहरमई अमृतमई पर अमृत बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत विरले ने जिन्हां ने संखिए दा कुश्ता बनाया होवे बहुते ने जिन्हां ने अंगूर दी शराब बना ली संतरे दी शराब बना ली मिठे गन्ने दे रस दी शराब बना ली थोड़े ने जिन्हां ने जिंदगी नूं मिठास नाल भर दिता बहुते ने जिन्हां ने कुड़त्तन दे नाल अपने जीवन नूं गर्क कर लिया बहुत कौड़ा कर लिया बहुत कौड़ा कर लिया। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने युग दे प्रभाव तो बचण वास्ते क्योंकि युग ते कलाल है

शराब सजा के बैठा है। तो युग दे प्रभाव तो बचन लई, ए पुरख तो सत्संग कर, सत दी विचार कर, सत दा चिंतन कर, ताकि युग दे प्रभाव तो तू बच सके, इस कलाली तो तेरी जान छिड़ सके, और तू ओ रस पीवे कि जगत दे सारे रस फिक्के पै जान, व्यर्थ हो जान। और इसे प्रथाएं ये सतगुरु ने पंक्ति उच्चारण की थी, बिखे बन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो। की जहर तो पी रही है, अमृत पी, अमृत पी, अमृत पी, नाम रस अमृत है, और इसकी खूबी है इनू पींदे ही सारी जहर शरीर चो निकल दी है, सारे फिके रस शरीर चो निकलते ने। सतगुर ए अवस्था हर एक दी बनावे।

जिंदगी पुरुष की कशिश दे जीवी है, मर के नु अगला जन्म पुरुष का मिल जाएगा। अगर एक पुरुष आखिरी दमा तक स्त्री की कशिश दे जीवे है, मरण तो बाद अगला जन्म इस स्त्री का लाजमी मिलेगा। पुरुष हर जन्म दे पुरुष होवे ऐसा कोई लाजमी नहीं, स्त्री हर जन्म दे स्त्री होवे ऐसा कोई लाजमी नहीं। थोड़ी जिहा मात्रा का भेद है दोहां दे शरीर च, एक स्त्री एक पुरुष, पर कशिश विपरीत दी। इस विपरीत दी कशिश दे चां बड़ी प्रबल वासना प्रदान है, जिन्हों कहिंदे ने काम वासना गुस्ताखी मां। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का फैसला, छले कनक कामने, मनुख छलिया जांदा है कनक कामने। वह जो कामना चलती है धन की कामना, प्रभुता की कामना, माण वड्याई प्रतिष्ठा की कामना, पदार्थां की कामना, खाण पीण की कामना, फिर वक्ती तौर पर आके रुकती है स्त्री की कामना, कामने की कामना। तो स्त्री का नाम कामना पै जो है कामने ही पै गया, कामना की मणि, और पुरुष का नाम पै गया कामराज। कितनी भी सर्कल दे घूमती रवे स्त्री की वासना पुरुष से रुकती है, कितनी भी घूमती रवे वासना पुरुष की सर्कल दे स्त्री से रुकती है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। महाराज कहिंदे कलयुग ऐसा है, बस कामना प्रधान होके जी रहे, वासना प्रधान होके जी रहे, भावना प्रधान नहीं, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे विच ले आईए, ये मनुख बाजार दे च आया, फैक्ट्री दे च आया, ऑफिस दे च आया, मार्केट दे च आया, किसी धार्मिक मंदिर दे च नहीं आया, किसी गुरुद्वारे नहीं आया। अगर भावना करके आया, भरोसे करके आया प्रभु ते, भावना हो सकता है, अगर भावना नाल बैठा है तो यदि दुकान भी मंदिर बन जाए। ये भी मर्ज कर दे, वासना करके बैठा है तो गुरुद्वारा भी दुकान बन जाएगा, मार्केट बन जाएगा, बाजार बन जाएगा। बाजार दी हलचल, मार्केट दी बेईमानी और धंधे दी बेईमानी सारी धर्म विच आ जाएगी, क्योंकि वासना मलिन हो जाएगा धर्म। ये भी मैं अर्ज करते हैं, अगर धार्मिक कर्म में भावना वस ना होके कामना वस होके कर रहे हैं तो कीर्तन भी धंधा, कथा भी धंधा, मत्था टेकना भी धंधा, अखंड पाठ रखाना भी धंधा, पूजा पाठ रखाना भी धंधा। पर मैं भावना करके कर रहे हैं और भावना नाल मैं बाजार विच बैठा तो यकीन जानो दुकान भी हरि मंदिर बन जाएगा। खड्डी ते कपड़ा बुनद्या बुनद्या खपीर प्रभु नाल जुड़ जाता है। चेले रोकते ने हुण ते कपड़ा ना बुनो, थानू लोकी ब्रह्म ज्ञानी कहते ने, कहिंदे जद मैं कपड़ा बुनदा सी उदों तुसी मैनू कदी नहीं रोकिया, क्योंकि कपड़े बुनना सिर्फ मेरी रोजी सी, मेरा धंधा सी, ते हुण ते मेरा धंधा ही धर्म बन गया। मैं ते भावना करके बैठा, हुण तुसी कहिंदे हो ना करो, हुण ते मेरा धंधा भी धर्म बन गया। भावना अधीन कर्म धंधे नूं धर्म बना देंदे ने, वासना अधीन कर्म धर्म नूं भी धंधा बना देंदे ने। महाराज कहिंदे ने इतनी कामना प्रधान, धंधा ही धंधा चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा, मनुख दे नाल धर्म नहीं चल रहा, धंधा चल रहा है, परिवार चल रहा है, धन संपदा चल रही है, प्रभुता चल रही है, मनुख दे नाल प्रभु नहीं चल रहा। ये सारा खुलासा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च जिस तरह है, तुच बुद्धि अनुसार थोड़ा जिहा मैं थोड़े सामने रखिया। भावना करके गुरुद्वारे आवना है, वासना करके कामना करके बाजार दे च जाना है, फैक्ट्री जाना है, ऑफिस दे च जाना है। पर जे इत्थे भी कामना करके आ गए फिर गुरुद्वारे नहीं आए, ते असी ते बकायदा अरदास करदे आं फलाने दी इह मनोकामना, फलाने दी इह मनोकामना, ते हुण सुन लो, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संगराज। इत्थे ते सारियां कामनावां नूं परे सुट गया, किथे सुट के आईए, कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ न लीजे।

ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜੀਵਾਰ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਪ ਜਾਪ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੂਲ ਬਾਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਜੇ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾ ਕੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 8 ਜਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਗਾਲਬਨ ਸਨ 58-59 ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਪ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਪ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਪ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਪ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਸਾਰੀ ਜਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਪ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਇਹੀ ਜਪ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਜਦੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ। ਇਹ ਜਪ ਜਾਪ ਜਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪ ਬੈਰਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਜੋ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਗਿਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਬੈਰਾਗ ਜੈਸੇ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੋਲ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਲੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਨਿਰਲੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਨਿਰਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਕਤ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸਨੂੰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕਾਂ, ਬੈਰਾਗ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਕੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਬੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਜੋ ਮਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਹੈ 3-4 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਗਈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਰਕਿਕ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ, ਇਤਨੀ ਸੋਚਣੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੁੱਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਚਿੰਤਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਆਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਤੇ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
जो पदार्थां तो उदास नहीं वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। या इंज कह लो परमात्मा की तलाश कौन कर रहा है जो पदार्थ तो उदास हो गया है। परम जीवन की खोज कौन कर रहा है जो इस जीवन तो उदास हो गया है। निरंकार की तलाश कौन कर रहा है जो संसार तो उदास हो गया है। संसार तो उदासी कुछ कारना करके होंगी है। प्रथम ज्ञान करके, दूसरी अपनी निजी सोचनी करके, तीसरा कोई चोट लग जाए बड़ी गहरी संसार तो उदास हो जाता है। चौथा इस संसार दिस जो कुछ प्राप्त करना चाहता है नहीं होया, उदास हो जाता है। लेकिन फिर भी इस तरह के उदास बंदे की जिसकी संसार दे चजे पूर्ति नहीं हुई, एक निक्की जी आसा बनी रहती है चलो अज पूर्ति नहीं हुई कल हो जाएगी। ये पूर्ण तौर पर निराश नहीं होता। पर जो निजी सोचनी करके है वो तो पूरा उदास हो जाता है। मैं पढ़ रहा सी एक दिन दीवाने गालिब, हालांकि संसारी पद्धर का शायर है इश्क मिजाजी, अजे हकीकी दे नेड़े नहीं गया, लेकिन कहिंदा है इस दुनिया च मैं जी के की करा, बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे। कहिंदा सारा संसार बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नादान लोग, इन्हां नाल मैं किस तरह जीवां, सवेरे खा लेना शामी खा लेना कल फिर खाना, ये इसे तरीके नाल जिंदगी बतीत करी जाना। गालिब कहिंदे ने ते मैनूं इंज लगदी है जिवें मशीनी जिंदगी है, मैं इस नाल जीवन नूं राजी नहीं। इते बचकानी खेल है, बाजी चाहे इतफाल, इतफाल कहिंदे ने बच्चे, तिफल कहिंदे ने बच्चे नूं, इतफाल बच्चियां दी जमा। बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। कहिंदा दिन रात ए बच्चियां दा खेल हो रहा है, एक खेल है औरंग सुलेमान मेरे नजदीक। औरंग कहिंदे ने तख्त जिदे उते बादशाह बैठता है, तख्त सुलेमानी बच्चियां दा खेल प्रतीत होंदा है। जिस तख्त लई दुनिया इतना संघर्ष कर दी है, इतना लड़ दी है, गालिब कहिंदे ने इस ते बैठ के मैं खुश नहीं हो सकता, इते बच्चियां दा खेल है, कुछ भी नहीं है। एक बात है अजाज मसीहा मेरे आ गए। गालिब कहिंदा हजरत ईसा दे मौजे भी बच्चियां दा तमाशा है, कुछ भी नहीं है। वो किसे अंधे दे सिर ते हथ रखदा है उन्हों सुजाखा कर देंदा, किसे बीमार दे सिर ते हथ रखदा है तंदुरुस्त कर देंदा, किसे मुर्दे दे सिर ते हथ रख देंदा है तो जिवा देंदा है। गालिब कहिंदे है जिसनू जिवा दिता है क्या फिर नहीं मरिया, जे फिर मरिया तो बच्चियां दा तमाशा करदा रहा और की। कहिंदा मैं ईसा दे नाल भी जी नहीं सकता, ये भी बचपना है। मैं तख्त सुलेमानी ते भी बैठ के जी नहीं सकता, ये भी बच्चियां दा खेल है। और मैं संसारी मनुखां दे नाल भी जी नहीं सकता, सब बच्चे ने। जद मनुख की सोचनी बड़ी बुलंद हो जाए, यकीन जानो आम मनुख उस बच्चे प्रतीत होने लग पेंदे, बिल्कुल बच्चे। गालिब कहिंदा मैं जीवां ते किस तरह जीवां, मेरे लिए जीवना बड़ा औखा है। हुण इस तरह का मनुख या ते जीवन शैली नूं बदले या इस जीवन नूं भुलाण दी कोशिश करे या मिटाण दी कोशिश करे, तीन तरीके ने। या ते जिंदगी नूं बदले या जिंदगी नूं मिटावे या जीवन नूं भुलाण दी कोशिश करे, इसने तीसरा तरीका चुन लिया, शराब पी के अपने आप नूं भुलाण दी कोशिश करता रहा। सवेरे पींदा है, दोपहरे पींदा है, नशा टुटन ही नहीं दिंदा। इतना अजीम चिंतक,
इतना गहरा दार्शनिक हर वक्त नशे च रहिंदा है और हालात इत्थे तक पहुंच गए, बाल बाल करजाई हो गया, अंग्रेजां दी हकूमत हो चुकी सी, बहादुर शाह नूं रंगून दी जेल विच कैद कर दिता सी, ए दरबारी शायर भी सी बहादुर शाह दा, तो अंग्रेजां ने इस नूं सियाणा चिंतक दार्शनिक जान के उस जमाने च 84 रुपए इस दी माहवार पेंशन बन दित्ती और बहुत सन 84 रुपए उस जमाने दे, पर इस सारे दी शराब पी जांदा सी, सारा दिन पीनी, नशा टुटन ही ना देना, पीनी पिलानी बस इसे चीज जो है हर वक्त गायब रहने लग पे। हालात इत्थे तक पहुंचे है, मुफलसी, बाल बाल करजाई हो गया, अज बेगम आके अगों रोई भी अज मैं थोड़े लिए खाना भी नहीं बना सकती, घर विच कुछ भी नहीं है और कोई बाणिया कोई दुकानदार मैनू उधार देने नू तैयार नहीं, ते थानू जो कुछ मिलता है वो पी लेंदे हो। अद्धा हिसाब किताब मेरे हवाले करो, अद्धी रकम ते मैं कम से कम घर ते चला सका, थोड़े लिए रोटी दी दिक्कत ते ना होए। वक्त दा इतना अजीम मनुख रोटी तो भी आतर हो गया सी, घरवाली नूं रोंदे होया ते मजबूर हालत विच देख के गालिब कहिंदा, अच्छा खुदा दी कसम हुण जद पहली तरीक आवेगी 84 रुपए मिलणगे अद्धे तैनू दे दें, अद्धे तेरे। खुश हो गई बेगम, उसने कह दिता फिर मैं 2-3 महीने च सारा उधार भी ला देंगी, घर भी ठीक चलेगा, तुसी अद्धे मैनू दे दिता। खैर ज्यों द्यों करके इसने दिन टपाए, पहली तरीक आई, घरों बड़े सोहने ढंग नाल बेगम ने विदा कीता और उड़ीक दे घर दी चौखट ते ही बैठ गई, हुणे गालिब आएगा। दोपहर हो गई नहीं आया, दोपहर ढल गई नहीं आया, शाम पै गई नहीं आया, दुखत होई मायूस होई बेगम। ज्यों सूरज ढलिया थोड़ा जिहा हल्का हनेरा पैण लगा, लड़खड़ांदा होया गालिब आंदा होया दिखाई दिता है, 10 खचरां दे उत्ते शराब दियां बोतलां लदियां हुई, इस तरह ही करदा हुंदा सी, फिर दिन रात पींदा रहिंदा सी घर दे। खचरां बूहे ते आ गईयां, शराब दियां लदियां हुई, आप भी लड़खड़ांदा होया जारो जार फुट के रो पई बेगम। और ए बेगम ने आख्या, तुसी खुदा दी कसम चुकी सी कि अद्धी माया दे देंगा, कि तुसी सारे दी शराब ले आए और मैं महीना किस तरह लगाऊंगी, तुसी खुदा दी कसम चुकी सी। गालिब कहिंदा है, उसे खुदा ने मेरी कसम तोड़ दित्ती। किस तरह? कहिंदा है, जद मैनू 84 रुपए मिले ना, मैं बिल्कुल घर दी तरफ आ रहा सी, 84 दे 84 तैनू देने सन, पर करां की, रस्ते च खुदा दा घर पै गया, मस्जिद पै गई, मौलवी वाज दे रहा सी, असी कहिंदे आ कथा करनी हो, कहिंदे ने वाज देण, मौलवी वाज दे रहा सी, तो मैं सोचिया चलो खुदा दी गल भी अज सुन ली है, की कहिंदा है। मौलवी सारे स्रोतियां नूं नमाजियां नूं मुतासर होके कह रहा सी, सारियां नूं मुखातब करके, कि रोजी दहिन खुदा है,
ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹਿੰਦ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਗਾਲਬ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੋਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਤਨੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੋਲ। ਮੂੜ ਬੰਦੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਜਿਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਬਿਰਤੀ ਸਿਆਣੇਪਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਸ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਓ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ, ਹਕੀਮ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਮੋਮਨ ਜੈਸਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਰਨ ਦਾ, ਅਬ ਤੋ ਘਬਰਾ ਕੇ ਯੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਪਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੋ ਕਿਧਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਤਨੀ ਉਦਾਸੀ ਚ ਕੀ ਜੀਵਣਾ, ਇਤਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀ ਜੀਣਾ। ਪਰ ਇਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੀ ਉਦਾਸੀ ਪੱਲੇ ਪਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਰਵੇ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਅਕਾਰਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵੇ। ਤੋ ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇਗਾ। ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ, ਔਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਪ ਤੇ ਜਾਪ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜਪ ਜਾਪ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਪ ਜਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਜੇ ਮੂੜ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਤਨੀ ਮਰਜ਼ ਕਰ, ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ। ਜੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੈਸੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗਾਲਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਧੌਂਕਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਵਾਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਔਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ,
कि मैं नहीं जीवना चाहता, उदास हो गया सी। खुद नू खत्म भी ना कर सकया, खुद नू बदल भी ना सकया, खुद नू भुलाने की कोशिश करन लग पिया। पी गए ये सदी बहुत सियानी सदी है, ज्ञान विज्ञान ने बड़ी तरक्की की थी है और बड़ी तेजी नाल ज्ञान चले है। कदम कदम ते स्कूल कॉलेज और जितनी सियाण बद गई उतनी उदासी बन जो है बद गई, और जितनी उदासी बद गई है उतनी शराब बद गई, उतनी लोकी पानी दी तरह पीण लग पे, लोकी बेहोश होना चाहते, अकल तो थल्ले जीवना चाहते, ना सोचिए क्योंकि सोचदे आते बेचैन, सोचदे आते दुख, सोचदे आते तकलीफ। उदास होने दे ए तीन कारण ने, या ते दिमागी तल ते जीवे बहुत सियाणा होया, या उसनू कथा कीर्तन चोट कर गई है, या संसार तो कोई चोट लग गई है, परिवार तो कोई चोट लग गई है, उदास हो जाएगा। लेकिन एक खतरा है, जड़ी संसार तो चोट लगे है लाजमी नहीं है ये जिंदगी नू बदलन की कोशिश करे, बल्कि अक्सर मौका तो यह आता है जिंदगी नू खत्म करने की सोचता है। सारी दुनिया च लोकी सुसाइड कर देने, आत्महत्या होंदी है, और संपन्न अमीर देशां ज्यादा है बनिस्पत गरीब देशां दे, क्योंकि गरीब इतना उदास ते निराश नहीं आउंदा, वो कल दी आसा बनाई रखता है, चलो अज मेरे कोल कुछ नहीं ते कल हो जाएगा। ये जिहड़ी कल दी आसा है उन्हूं निराश नहीं होण देंदी। जिस मनुख की जिंदगी च कल रहा ही नहीं, जो कुछ चाहिए अज प्राप्त है ओदे नाल तृप्ति नहीं हुई, ओदे नाल सुकून नहीं मिलिया, तो उदास ते हो जाएगा। तो हुण इह किस तरह जीवे, किवें जीवे, इह ते खुदकशी करेगा, सुसाइड करेगा, सारी दुनिया च है, या ते कोई संसार तो चोट लग गई है, या अपनी सोचनी बड़ी प्रबल है, या सतगुरु दे शब्द ने चोट कर दिती है, परमात्मा दे नाम ने चोट कर दिती है। ये अलग अलग चोटां दे नतीजे अलग अलग होणगे। अगर शब्द ने चोट कीती है ये सुसाइड नहीं करेगा, आत्महत्या नहीं करेगा, ये खुद नू बदलेगा। जिस ढंग नाल मैं जी रहा इस तरह नहीं जीवना, जिंदगी बदलनी है, जीवन नू बदलना है। पर संसार तो चोट लग गई है, लाजमी नहीं कि जीवन नू बदले, हो सकता जीवन नू खत्म करने की कोशिश करे। ते सोच सोच के इस नू चोट लग गई है, जगत कुछ भी नहीं है, लाजमी नहीं है जगत जो है जीवन नू बदले, हो सकता जीवन नू भुलाने की कोशिश करे, शराब पी के कोई भी नशा करके। नशे दुनिया च इस सदी तो नवे तो नवे प्रचलित हुए ने, क्योंकि सदी बड़ी सियाणी सदी है और बड़ी उदास सदी है। किस तरह जीए, जिहड़े मनोरंजन दे साधन अज मौजूद ने पहले नहीं सन, और जितना उदास अज दा मनुख है पहले कदे ही नहीं सी, क्योंकि अजोका मनुख सोचदा बहुत है, विचारदा बहुत है। मैं फिर दोहरा दें, आप सारे सियाणे बैठे हो, उदास बिरति तीन कारणा करके पैदा हो सकती है, या तो खुद हर वक्त सोच विचार दे तल ते जीए और बड़ी गहरी उसकी सोचनी होवे, इस जीवन नाल सहमत नहीं होएगा, ना संसार नाल, इत कुछ भी नहीं है, किस तरह जीवी है, जैसे गालिब ने कह दिता किस तरह मैं जीवा, इन्हां बच्चियां दे च मैं किस तरह जीवा, इस बचकानी जिंदगी नूं मैं किस तरह जीवा। एक ते अपनी सोचनी तो उदास बिरती दा जन्म हो सकता है, दूसरा कोई चोट लग गई है, बहुत वड्डी बेइज्जती हो गई है, बहुत गहरी चोट लग गई है, और ऐसा प्रतीत हो गया है कि कुछ भी नहीं जगत, ये जीवन कुछ भी नहीं, उदास हो गया है। या जपदियां जपदियां परमात्मा ने नाम नहीं चोट कर दिती है, गुरु दे शब्द नहीं चोट कर दिती है, कथा कीर्तन तो ही चोट खा गया है, उदास हो जाएगा।
कथा कीर्तन ने अजे चोट नहीं की थी। दरअसल कथा कीर्तन तो इसने अपने मन नु बचाया, एक पासे कीता है, इस वास्ते चोट नहीं की थी। ये उदास नहीं होया, अजे सोचदा समझदा नहीं पिया, अजे सोच विचार दे तल ते नहीं जी रहा, अजे जिवे पशु जी रहे ने इस तरह ही जी रहा है, शरीर दे तल ते, दिमागी तल ते नहीं जी रहा, या अजे इस नु कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, इस वास्ते उदास नहीं। जो भी थानू उदास ना दिखाई देवे, इन्हां तिन्नां च कुछ ना कुछ ते गल होवेगी, या तो बिल्कुल पशु की तरह होवेगा, दिमाग तो थले जी रहा होवेगा, शरीर के तल ते कोई सोचनी विचारना नहीं है, या इसनू कोई चोट नहीं लगी, या जे कथा कीर्तन इसके हिरदे नू छू नहीं गया। संसार तो जड़ी चोट लगती है, मैं फिर दोहरा देवा, जद मनुख उदास होंदा है लाजमी नहीं ये अपने आप नू बदलन की कोशिश करे, हो सकता है अपने आप नू खत्म करने की कोशिश करे, खतरा है, बहुत वड्डा खतरा है, सारी दुनिया च खुदकशी मौजूद है, कौन कर देने जो चोट खा जाते हैं और कहने नहीं जीवना की करना है जी के, इतने निराश हो जाते ने, इतने उदास हो जाते, जीवना औखा हो जाता है उन्हां लई और खुदकशी कर लेंदे ने। हां 5% ऐसे मनुख ने जो खुदकशी नहीं करते, जगत तो चोट खा के अपने आप नू बदलन की कोशिश करते ने, जैसे कि राजयोगी परतरी, ये योगी बनया, ये संत बनया कथा कीर्तन तो चोट खा के नहीं, इस तरह के पुरुष नहीं सी। और ये भी अर्ज करते हैं, इसनू चोट घरों लग गई और इसने गल नू छुपाया भी नहीं। वैराग शतक जो इसका ग्रंथ है, उहदे च कहिंदा मैं संत क्यों बनया, उन्हें कारण भी दस देता है, जोगी मैं क्यों बनया, कोई मैं सत्संगी नहीं सी, कथा कीर्तन जाके नहीं सुनदा सी, ते मेरे उपर असर पै गया, ते मैं उदास हो गया, निराश हो गया, इस तरह की कोई गल नहीं। फिर जोगी क्यों बनया, कहिंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मोह तिन की तन मोह तन माए रती ना, वो आन उपमान के संग रति फुन तामन में गन का ग्रह कीना, धृग है अब लाभृद कंदरब पे और मोए धिकार जो मार अधीना, इस रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। इनू घर तो चोट लग गई, घर वाली तो पिंगला इसकी चहेती राणी सी। इहदे तीन ग्रंथ ने, वैराग शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। वैराग शतक इसका बहुत कीमती ग्रंथ है और गुरु नानक की कृपा भी भरतरी ते बहुत ज्यादा सी, दो तीन शब्द भरतरी ते प्रति सतगुरु ने उच्चारण किए ने, सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म नहारे, कह नानक सुन भरतर जोगी खीवा अमृत धारे। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये कहिंदा जिन को चित मैं नित मैं चित मौ तिन की तन मौ तन माए रतीना, जो मेरे चित दे च हर वकत सी, मैं कदी जिसनु भुलाया ही नहीं, उस दे चित दे च मैं नहीं सी, जिन को चित मैं नित मैं चित मौ तिन की तन मौ तन माए रतीना, वो आन पुमान के संग रति फुन तामन में गन काग्रह कीना, मेरे चित दे च पिंगला सी हर वक्त, मैं उसनु याद कीता है, पर पिंगला दे चित दे च मैं नहीं सी, वो आन पुमान के संग रति फुन तामन में गन काग्रह कीना, उते गनका बनी हुई, उते परश पुरुष दा जो है उसके मन दे चिंतन ते उसका संग। परतरी कहिंदा जिस दिन मैनू पता चलिया कि जिसनू मैं प्राणा तो भी ज्यादा प्यार कीता, हर वक्त याद कीता, उसके चित दे च मैं नहीं हां, वो आन उपमान के संग रति फुन ता मन में गन काग्रह कीना, धृग है अबला वृत कंदरब पे और मोए धिकार जो मार अधीना, ऐसी स्त्री ते लानत जिसका पति छत्रपति राजा होए और वो अपने चित दे च उसनू थां ना दे। ते भरतरी कहिंदा मेरे ते भी लानत कि मैं जिंदगी दा मकसद एक स्त्री ही समझ लिया, ये कहिंदा मेरे ते मोए धिकार, मेरे ते भी लानत,
और मोह दिकार जो मार अधीना श्रीत समूह की प्रीत तजी निरप होए जोगीश्वर ईश्वर चीना। इस तरह की रीत मैं छोड़ देती है। राजा होंदे होया जोगी हो गए, नवी जिंदगी की तलाश, ये जीवन नहीं चाहिए, ये संसार मैनू नहीं चाहिए, कुछ होर दुनिया की तलाश। गोरख कहिंदा कोई होर दुनिया भी है तो उसका चेला बन गया, वो जिहड़ी होर दुनिया है मैं उत्थे वसना इस दे च नहीं, वो जिहड़ा होर जीवन है मैनू वह चाहिए है, ये नहीं, मैं उस दे च जीवना है। ये घर तो ही चोट खा गया, भाव संसार तो ही चोट खा गया। ऐसा भी आउंदा है कि घर तो संसार तो चोट खा के कोई जोगी बन गया, संत बन गया, गुरमुख बन गया, भगत बन गया, और शब्द का चोट ये तो लाजमी 100% वो संत बनेगा, लेकिन संसार तो चोट लगी है लाजमी नहीं कि संत बने, भगत बने, परमात्मा की तलाश करे, हो सकता है खुद नूं खत्म करने की कोशिश करे। और जो बहुत सोच सोच के उदास हो गया है, बहुत उच्चा सोचे है, बहुत गहरा सोचे है और उदास हो गया है, लाजमी नहीं ये भी संत भगत बने, हो सकता है ये अपने आप नूं भुलाने की कोशिश करे। बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े फिलोसफर दिमागी तल ते जीण वाले करीबन करीबन 99% शराबी ने 1% नूं छोड़ के और रज के पींदे ने। किसी दे ज्ञान दे नाल भरी हुई कोई वड्डी किताब पढ़ के, उदियां कवितावां नूं पढ़ के, उदा दर्शन ते फिलसफा सुन के किधरे इस चक्कर च ना पै जाना कि ते आसमान दा वासी है, ये ते सतवें आसमान ते रहिंदा होवेगा। नहीं, कदी खोज करोगे ते किसी पब च मिलेगा, लड़खड़ंदा होया मिलेगा। मैं 1% दी जो है गल करने हैं वो शायद बचे हुए ने। एक बड़ा बुलंद पाया हिंदुस्तान दे शायर सी फिराक गोरखपुरी, जिन्हों सारा मुस्लिम जगत हजरत करके पूजदा सी, उंज हिंदू सी, राम नारायण फिराक गोरखपुरी 50-60 किताबां दा लिखा रही, बड़ा अजीम चिंतक। दिल्ली लाल किले विच 26 जनवरी वाले दिन पंजाबी कवि सम्मेलन आउंदा है, हिंदी कवि दरबार आउंदा है और उर्दू का मुशायरा आउंदा है, वारी वारी एक एक दिन। और जिन्नियां साहित्यक रुचियां दे मालक लोग ने वो सारे पहुंच दिन लखां दा उत्थे इकट्ठ पहुंचदा है, हिंदी कवि सम्मेलन विच, पंजाबी कवि दरबार विच और उर्दू मुशायरे विच। शुरुआत उर्दू मुशायरे तो आती है, पहले दिन उर्दू मुशायरा आता है, बड़ी दुनिया पहुंचती है। यह सारा प्रोग्राम टेलीकास्ट भी आता है, रात के समय वक्त कट के मैं भी एक दिन टीवी के सामने बैठा फिराक गोरखपुरी नूं सुनन लई। यह 50 किताबां का लिखारी, इन्ना गहरा सोचने वाला और इसकी सोचनी सत्तां आसमानां नूं पाड़ के भी अगे लंघ जाती है कि अज दे दिन की आखेगा, कोई बड़ी वड्डी नज़म सुनाएगा, बड़ी कीमती कीमती बोल। और जद अनाउंसर ने फिराक गोरखपुरी का नाम लिया कोई 11वें-12वें नंबर ते, तो मेरा पूरा ध्यान एकागर हो गया, भाई इसनूं सुनिए, एक एक लफ्ज इसका सुनिए। उदास होए बिना नवे जीवन की तलाश करनी बड़ी औखी है, जो इस संसार को उदास ही नहीं निरंकार की किस तरह तलाश करेगा, मुश्किल है। और जैसे शब्द चोट कर गया है, उदास हो गया है, ये बंदा अगर मुसलमान है तो शरा का पूरा पाबंद हो जाएगा, अगर ये बंदा गुरुद्वारे आ रहा है तो सारी रैत वैत का धारनी हो जाएगा एकदम, और ये बंदा अगर हिंदू है तो पूरा कर्मकांड अपना लेगा फौरन। शब्द ने चोट कर दी, संघ ने चोट कर दी है, तो जब सत्संग ने चोट की थी है
तो यह अपने इष्ट का पूर्ण तौर पर बनने की कोशिश करेगा। अगर कोई हिंदू पूर्ण तौर पर कर्मकांडी नहीं होया अजे सत्संग ने चोट नहीं की थी। अगर कोई मुसलमान पूर्ण तौर पर शरा का धारनी नहीं होया यकीन जानो अजे नमाज ने चोट नहीं की थी। अजे कुरान की तलावत का कोई असर नहीं होया, कुछ भी नहीं। कोई पूर्ण तौर पर रहत वैत का धारनी नहीं होया अजे शब्द ने चोट नहीं की थी। अजे कथा कीर्तन ने कतई चोट नहीं की थी। ए, मन नु एक पासे कर जांदा रहा, शब्द का तीर लंघ जांदा रहा, नहीं लगे। अगर लगता तो यह पूर्ण तौर पर रहत वैत का धारनी हो जाता। अगर सत्संग ने चोट की थी है तो पूरा कर्मकांडी हो जाना सी इसने। और जे मुसलमान है तो पक्का शरई हो जाना सी, पांच वक्त का पक्का नमाजी और पूरी कुरान की तलावत करने वाला, जकात देने वाला, रोजे रखने वाला, किसी भी नियम नु छोड़न वाला नहीं, पूरी पुख्तगी पकया ही। तो हुण जो कुछ मैं कहन लगा उन्हों थोड़ी जी गहराई नाल सरवण करना। साल दो साल पांच सत साल शरा दे च लंघे ने, कर्मकांड दे च लंघे ने, रहत वैत दे च लंघे ने, लेकिन नवी जिंदगी प्राप्त नहीं हुई, नवा जीवन प्राप्त नहीं होया। तो दो शब्द बर्दाश्त करने, यह बंदा शरा तो भी उदास हो जाएगा, ये बंदा कर्मकांड तो भी उदास हो जाएगा। तो हाथ जोड़ के मैं माफी मंग लवा, मैं गलत होव तो मेरी सुधाई भी कर देना, ये बंदा रहत बैत तो भी उदास हो जाएगा। क्यों? जिसले शिंगार कीता है उदी झलक नहीं मिली। पांच सात साल हो गए ने, दस साल हो गए ने, तो क्योंकि सोचण वाला बंदा है, ताही तो शब्द ने चोट की थी, सोचदा ना तो चोट लगनी नहीं सी। चोट ते स्याणे नूं लगेगी लाजमी। 90% खुदकशी स्याणे बंदे करदे ने, मूड नहीं करदे, ओके ना होना। और अपने आप नूं भुलाण दी भी कोशिश होई करदे ने, जो बहुता सोचदे ने ते बहुते सोचण करके गमगीन हो जांदे ने, ते अपने आप दे नाल बैठना बड़ा औखा हो जांदा है, अपने आप नूं भुलाण दी कोशिश करदे ने। मनुख पुत्र नाल बैठ सकदा है, मित्र नाल बैठ सकदा है, पत्नी नाल बैठ सकदा है, पति नाल बैठ सकदा है, कोई किताब चाहिए टीवी नाल बैठ सकदा है, रेडियो नाल बैठ सकदा है, मनुख अपने आप दे नाल नहीं बैठ सकदा, कोई भी नहीं बैठ सकदा। क्यों? जैसे अपने आप दे नाल बैठदा सिवाय बेचैनी तो होर कुछ भी नहीं है। हर मनुख दौड़ रहा है कितों, अपने आप तो भजो, अपने आप तो भजो, दूसरे कोल बैठो। पर कौन दसे दूसरे कोल भी यही सियापे ने, यही कुछ है, दूसरा भी यही कुछ। किस पे खोलो गंठड़ी दुखी भरा आया, महाराज कहते मैं गंढ के अगों खोलना चाहिए, अगो खोलन लगना अगर पहले ही खोल के रख देना, मैं एक दुख की गल करदा वो दस दुख की गल करदा। बस दो दुखी बैठ के अपने दुख नु बुला सकते ने, मिटदा कोई नहीं, यह भी मैं अर्ज करते हैं। वक्ती तौर पर बुलाण का एक ढंग आंदा है। इस वास्ते कहने ने इकला ते रब भी ना वे, इकल अखर दिए, ते जिन्हों इकल अखर

سری راگ محلہ پہلا سب رس میٹھے منیے سنیے سالوں کھٹ ترسی مکھ بولنا مارن ناد کیے چھتی امرت بھاؤ ایک جان کو نظر کرے بابا اور کھانا خوشی خوار جت کھا دے تن پیڑیے من میں چلے وکار زندگی دا لکش اگر اسی لبھیے عام دنیاوی منکھ دا عام سنسارک انسان دا لکش کی ہے منکھ کیوں جی رہا ہے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے دنیاوی منکھ دے لکش دا اس پاون پوتر واک دیچ بڑا سندر چترن کیتا ہے تصویر کشی کیتی ہے آپ فرمان کر دینے دنیاوی منکھ سنسارک منکھ عام انسان آد آدمی کھان لے جی رہا ہے پین لے جی رہا ہے پہنن لے جی رہا ہے منورنجن لے جی رہا ہے پروار لے جی رہا ہے پروارک خوشیاں لے جی رہا ہے اور پھر جی رہا ہے سون لے نیند جیون دا آخر لکش کی ہے اس تو بنا ہور کچھ لبنا بھی نہیں کھانا پینا پہنن زندگی دے چوں کڈ دئیے منورنجن دا سارا سامان ایک پاسے کر دئیے پروارک خوشیاں نو بالائے طاقت رکھ دئیے تے نیند نو بھی ایک پاسے کر دئیے شاید منک اج ہی خودکشی کر لوے آتم ہتیا دی سوچے پھر میں جیواں ہی کہوں کس لئی جیواں جیونا عام دنیاوی منک دا بس اسے لئی ہے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی زندگی دیچ اینا تمام وستواں دی پردھانتا نہیں سی نہ کھان دی نہ پین دی نہ پہنن دی پروارک کشش بھی نہیں سی گھروں نکلے بارہ بارہ سال دی اداسی جنگل دے رکھاں تھلے ہور منورنجن بھی کی ہو سکدا سی انج کہہ لو سارے منورنجن نو بلائے طاقتے رکھیا کدرے مرو تھل دا پینڈا کدرے پہاڑاں تے بھرمن سمیر جوگیاں کول کدرے تنہا بیابان جنگلاں دچ رکھاں دے تھلے واسا جسنوں عام دنیاوی منک منورنجن کہندا ہے اے تے گرو نانک دے نیڑے ہی نہیں گئے پروارک خوشیاں تے نیند اس سب کچھ نو دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے بلائے طاق تے رکھ کے دس دیتا ہے جیون دا لکش صرف یہی نہیں ہے زندگی دا منورت صرف یہی نہیں ہے کچھ اور بھی ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس سب کچھ تو بنا بھی جیونا بڑا اوکھا ہے پر اس سب کچھ واسطے جیونا بھی کوئی جیونا نہیں یہ زندگی بھی کوئی زندگی نہیں پاون پوتر سری راگ دا یہ پاک اس دے چار پہرے نے چار پدے نے انج کہہ لو چار پکھ نے جیون انہ چاراں لئی ہی بتیت ہو رہے ہے پرتھم کھانا ہے اور کھانا دنیاوی منکھ دی صرف شریرک لوڑ نہیں من دی سوچ نہیں ہے من دا چنتن ہے وچاراں دے وچ کھانا ہے سوچنی دے بھوجن ہے اٹھدا بیٹھدا پہ یاد بھوجن دی چل رہی ہے کھان دی چل رہی ہے لوڑ ہے یا نہیں سویرے تو شام تک
चिंतन इसे रही चलता है और चिंतन कर करके जद मनुख थके फिर पहनण दी सोचनी ते पहनण दी वक्ती पूर्ति तो बाद फिर मनोरंजन चाहिदा है। कोई न कोई दुनियावी मनोरंजन जिस नाल मन परछे और फिर परिवारक खुशियां चाहिदिया ने, परिवारक सहमति चाहिदी है और परिवार दे च अपना होना इंज समझे जैसे परिवार दी लोड़ है और परिवारक खुशियां मेरे नाल जो है संबंधित ने और फिर इस सब कुछ नू हंडांदा भोगदे होया मनुख चाहुंदा हुण मैं सौ जावां, हुण मैनू चंगी नींद आवे, हुण मैनू गूढ़ी नींद आवे। वाकई सब कुछ नू मनुख दी जिंदगी चो कढ दईए तो आम दुनियादार दी मनुख दी जिंदगी च कुछ रह भी नहीं जांदा, कुछ बचदा भी नहीं। इस सब कुछ दी कशिश ना देख के माता तृप्ता जी ने एक दिन धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं साफ कह दिता, ऐ मेरे पुत्र नानक, जे तुसी किधरे घर रहो तां मैं सोहणे सोहणे पकवान बना के थानू खिलावां और थानू खांदे होया वेख के मैनूं खुशी होवे, मैनूं प्रसन्नता होवे। सिर्फ खाण दी ही गल क्यों, मैं कीमती तो कीमती कपड़े लियावां और खुद सिला के थानू पहनावां। सिर्फ इतना ही क्यों, सुंदर घोड़ी उस दे उत्ते मैं चांदी दी काठी पावां, लगाम दे सोना जुड़िया होवे और ऐसी सुंदर घोड़ी असवारी लई होर तरह दे मनोरंजन दे साधन तरह तरह दे मैं थोड़े लई मुहैया करां। फिर थोड़ा एक परिवार है, परिवारिक खुशियां माणो, फिर सुख दी नींद सौवो। ए उस नूं आखिया जा रहा है जो हर वक्त सुख दी नींद देच है, हर वक्त आनंदी से जाते है, हर वक्त खेड़े ते खुशियां दे माहौल दे जो जी रहा है और जिसनू कहिंदे ने ब्रह्मानंद, जो हर वक्त ब्रह्मानंद दे माहौल दे जी रहा है, ये सारा सलाह मशवरा उसनू दिता जा रहा है। अक्सर ऐसा होया है कि जद किसे मनुख दी शिखर ते पहुंची ए सुरत तो शिखर ते पहुंच के जो कुछ ओ बोले है ओ दुनियादार दे कन्ना तक नहीं पहुंचे है। थल्ले खड़े च खड़े हुए मनुख ने जो कुछ आख्या है ओनू अनसुणा कीता है उसने जो शिखर ते खड़ा है, जो बुलंदियां ते खड़ा है, तो तालमेल नहीं बैठे। बहुत सारे अवतारी पुरुषां दा संसार देच आगमन अजाई चला गया, अकारत चला गया। वो इतनी शिखर तो बोले, इतनी बुलंदी तो बोले, जो थल्ले खड़ देच खड़ा सी उसने सुनिया ही नहीं, उदे सिर दे उपरों लंघिया, उसका तालमेल ही ना बैठे। उन्हें शायद एवं कोई गूंजदी हुई आवाज महसूस कर ली, खास नहीं है, और जो तो खड़ देच बैठ के खड़ भरे बोल बोलदा रहे उदे बोलां देच भी खड़ सी, जिथे उसका तन खड़ देच कला सी उसकी बोलनी भी खड़ नुमा सी, बोल भी बड़े नीवे, बोल भी बिल्कुल ही खड़, और उन्हां बोलां नू कोई मन लवे तो इंज है जिवें जिंदगी नू किसे खड़ देच गिराना होवे, किसे गड्ढे दे सुटना होवे। तो इस तरह दे बोलां नू परम पुरखां ने अनसुना कर दिता, वांझी रह गई ए दुनिया उस महान बोला तो, और इस तरह जगत दा पूर्ण तौर ते कल्याण आज तक नहीं हो सकया। नहीं ते कितने महापुरुष आए, कितने अवतार आए, लक्ष्य ते उन्हां दा एही सी कल्याण करना है, कल्याण करना है। खड़ दे च जिंदगी बतीत करन वाला मनुख खड़ नाल ही मोह पा बैठा सी, गहरे गड्ढिया दे च ही जीवन दा आदि हो गया सी। उन्हें शिखरां नू छूना ही और शिखरां तक पहुंचना ही ए
सुपना ही मन लिया। यह हकीकत नहीं हो सकता, यह वास्तविक नहीं हो सकता, इस वास्ते सोचना ही बंद कर दिता। माता तृप्ता जी ने जद आख्या है, लाल जी कितने तरह तरह दे पदार्थ ने, मैं बनावा तुसी खाओ, मैनू खुशी होवे तुसी आनंद माणो। तो सतगुरु कहिंदे मां जी फिर थानू आनंद ही माणना चाहिदा है, ऐसा केड़ा पदार्थ है कि मैं नहीं छकदा। तृप्ता जी कहण लगियां, मैं ते मरदाने तो सुनिया कई कई दिन तक बार भोजन नसीब नहीं होंदा, कई कई दिन बिना खाणियां दे ही लंघ जांदे ने। और खाना पहल है, खाना अवल है, इतनी गल स्पष्ट है कि चार दिन दा जो भुखा मनुख है उसका मनोरंजन नाल संबंध टूट जाएगा, परिवारिक खुशियां नाल संबंध टूट जाएगा। की पहनना है और किस ढंग नाल पहनना है इसकी चाहत भी मिट जाएगी। हर तरह की चाहत नूं भुख खत्म कर देंदी है, भुख इको ही चाहत रखती है कि सिर्फ भुख मिटे, मेरी पूर्ति होवे। तो यह सब तो प्रथम है, भुखे मनुख लई मनोरंजन बेमैनी है, परिवार खुशियां बेमैनी ने, तरह तरह के वस्त्रां दा पहनना बिल्कुल बेमैनी है। तो खाना पहले है और यह गल स्पष्ट है कि बहुत सारी दुनिया खाण लई जी रही है, सारे दा सारा पशु उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते पैनना है ही नहीं, उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते परिवारक खुशियां है ही नहीं, सारे पशु खाण लई जी रहे ने और की है। पशु जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है, पंछियां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है, चौपाए जानवरां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है। अगर उन्हां दी कोई सोचनी है ते कम करदी है तो सिर्फ खाण लई कम करदी है, और सारी भज दौड़ खाने दी तलाश है, रिजक दी तलाश है, खुराक दी तलाश है, और कुछ नहीं। और गजब दी गल है कि पशु खांदियां खांदियां रजदा भी नहीं, खाई जांदा है, खाई जांदा है, क्योंकि होर कोई लक्ष्य ही नहीं कि थोड़ा जिहा लक्ष्य नूं बदले। मनुख दे खाण दे नाल नाल कुछ पहनना भी है, पहनण दे नाल नाल कुछ मनोरंजन भी है, मनोरंजन दे नाल नाल कुछ परिवारक खुशियां भी ने। तो इस तरीके नाल मनुख दी जिंदगी थोड़ी वंडी जांदी है, बिखर जांदी है। पशु कोल सिवाए खाने तो होर कुछ नहीं, तो चूंके खाना ही लक्ष्य है ते खाण तो इलावा होर कुछ है नहीं, इस वास्ते पशु अक्सर अधिक खा जांदे ने, ज्यादा खा जांदे ने, बहुत खा जांदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज माता तृप्ता जी नूं समझांदे ने, मां जी मैं तरह तरह दे पकवान रोज खाना, केड़े? तो आप कहंदे ने, सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोणे। मां जो मैं परमात्मा दा नाम मन लिया और मेरा भरोसा जो उस ईश्वर दे नाम विच जम गया है, बैठ गया है, ए मानो मैं सारी मिठास दा आनंद माण लिया। ऐसा केड़ा मिठा पदार्थ है जिसका रस मैं नहीं माणिया? हकीकत है, एक सच्चाई है, जदों भी कोई मनुख इस मिठास दा आनंद जिंदगी च पहली दफा माणदा है सब कुछ भिखा हो जाता है। बिखे मन फीका त्यागरी सखिए, नाम महा रस पियो। इस वास्ते परमात्मा दे नाम नू रस नहीं आख्या, महारस, सारी मिठास जिस दे च है, और ऐसी मिठास जिसनू किसी भी बैरूनी मिठास नाल तशबीह दे के समझाया भी नहीं जा सकता, प्रगट भी नहीं किया जा सकता। महाराज कहने जो मैं मन लिया है, मन दिया ही सारी मिठास अंदर प्रवेश कर गई है। कदी बगौर मुताला कर रही है, कथा दा सुनना, कीर्तन दा सुनना, धर्म मंदरां दे जाना, ध्यान साधना करनी,
सारा धर्म कर्म कांड अपनाना मैं इस वास्ते ही है कि किसी तरीके नाल मन परमात्मा नू परमात्मा करके मन लवे, और ते कोई मतलब ही नहीं है। और जिसदा मन जितना मंदा जाएगा अध्यात्मक तल ते उतना ही उन्नत होंदा जाएगा, उतना ही महान होंदा जाएगा, उतना ही अग्रसर होंदा जाएगा। तो साहिब कहंदे ने सब रस मिठे मनिए सुनिए साल होने सलूणा नमकीन, ए भी रसां दे चाहो एक महान रस है। गुरु घर दे निहंग संग इस नूं सर्व रस कहंदे ने। दाल दे च पाईए होर रस, सब्जियां दे च पाईए होर रस। वख वख सब्जियां दे जिस ढंग नाल पांदे जा रहे हैं लूण अपना रस बनाई जांदा है, और इसे ही लूण नूं इक पासे कर देवो, हर सब्जी बेस्वाद, हर दाल बेस्वाद, हर पकवान बेस्वाद। ठीक ही नाम दिता है सर्व रस। बहुत सारे रसां दी खान है ए नमक। महाराज कहंदे जो उसकी उस्तत मैं सुनना हां, और सुन सुन के जो आनंदित होना हां, और जेड़ा रस अंदर पैंदा है, मनो जगत दे जितने सलोने पदार्थ ने मैं सारे खा ले, मैं सारे चक ले, सारे पदार्थां दा आनंद माण लिया। सब रस मिठे मनिए सुनिए सा लोणे। जबान दे अनेका मुख्तलिफ रस मन्ने गए ने। उदे च खट्टा है तुरशीन, खट मिठड़ा है, करकरा है। सतगुरु उसका भी जिक्र करदे ने। खट

खट्टे तुरशीम खट मिठड़े ए सारे दे सारे ओ रस ने जो मैं अपने मुंह नाल परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दा उचारण करदा। जितने खट मिठड़े रस ने जितने तुरशीम रस ने है सारे दे सारे रसां दा मैं आनंद उदो माण लैना जद रसना उस दे बोल बोल दिए जद रसना उसका जप जप दिए। और इना सारे पदार्थां दे च मैं मसाले केड़े पाए ने नाद संगीत दा मैं मसाला पाया सुनदा संगीत दे च बोलदा संगीत दे च तू जद बोलदा ते सुनदा मैं संगीत दे च सुनना होर रसदायक हो जांदा है बोलना होर रसदायक हो जांदा है। गुरु नानक दी ए गल अज दे युग दे ते बड़ी सार्थक आउंदी जा रही है कि कल युग में कीर्तन प्रधाना हरि दी कीर्ति रागा नाल गायन करने और सुनने

अगर कोई मनुख अपने आहार दे प्रति सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है, तो स्पष्ट है वो अपने रोगां प्रति और मानसिक विकारों प्रति सुचेत नहीं है। इस वास्ते फैसला कर देता है बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ये ठीक है कि जीवन व्यापक है, वनस्पति दे च है, पशु पक्षियां दे च है, आदि मनुख प्रकृति दे हवाले सी, पहाड़ां दियां कंदरां च रहिंदा सी, रुखां तले रहिंदा सी, और प्रकृति ही जो उसनू खाण नू देवे ओही खांदा सी। इसका स्वयं का कोई चुनाव नहीं सी, क्योंकि मनुख अजे सभ्य नहीं होया सी। प्रकृति ने जो फुल दे दिते, फल दे दिते, वो खा लिया। पर जब फुल ना मिले, फल ना मिले, तो फिर पशुआं दा शिकार। इस ते जीवन बतीत होंदा रहा, जिंदगी इस तरह लंघदी गई, आखिर सहजे सहजे मनुख सभ्य होया। सभ्य तो मुराद सभा दे च बैठन दी जा चाहिए, सभा नू समझन दी जा चाहिए, सभा दे च अपने आप नू पेश करन दा ढंग इस नू आया। और जो विचार मैनू नहीं चंगे लगदे, उस सभा नू भी नहीं चंगे लगदे। सभा मैनू कैसी चंगी लगदी है और सभा नू मैं किस ढंग नाल चंगा लग सकदा, इस सोचनी दा जदों जन्म होया और इस सोचनी दे अनुकूल जद मनुख ने अपने आप नू ढा लिया, तो उसनू आख्या गया सभ्य। तो इसकी सोच दे च ए भी गल आई कि मैथों घट तो घट किसे नू दुख पहुंचे, चोट पहुंचे, तो मेरे आहार दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे, मेरी खुराक दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे। वैसे ते बनस्पति दे च भी जी, दाणियां दे च भी जी, और पहला समग्र व्यापक जीवन पानी, पहला पानी जीव है। जित हरिया सब कोय, अहिंसक ते मनुख हो नहीं सकदा, नहीं ते पानी दा त्याग करना पेगा, वनस्पति दा भी त्याग करना पेगा, दाणिया दा भी त्याग करना पेगा, क्योंकि जे ते दाणे अन्न के जिया बाज न कोय। बस इतनी सोचनी अंदर जन्म लवे कि मेरे आहार तो दूसरे नू चोट घट पहुंचे। पशुमान दा कुछ ऐसा जगत भी है जिथे मन विकसित हो गया है और मानसिक पीड़ा महसूस होंदी है, और जिथे मानसिक पीड़ा ज्यादा महसूस होवे उस पशु नू भी मनुष्य जैसा समझना चाहिदा है, मनुख जैसा समझना चाहिदा है। पर जिथे मानसिक सोचनी नहीं, मानसिक पीड़ा नहीं, सिर्फ शरीरक ही पीड़ा है, तो ओ वनस्पति जैसे ने, ओ दाणिया जैसे ने, क्योंकि दाणिया नू भी जद बुनदे आ तड़पदे ओ भी ने, दाणिया नू भी जद बुनदे आ उछलदे ने, तड़पदे ने, आवाज भी करदे ने, तिड़ तिड़ करदे ने, इह इन्हां दे चीखण दी आवाज है। तड़पदे होए किसे पशु नू वेख के अगर मानसिक पीड़ा महसूस होवे, तो उस नू तड़पदे होए दाणिया नू वेख के भी पीड़ा महसूस होनी चाहीदी है, दर्द महसूस होना चाहीदा है। फिर भी खुराक खान लगया उदी ए सोचनी होवे कि मेरे आहार तो दूसरे नू घट तो घट ही चोट पहुंचे, ताकि ऐसा आहार मेनू चोट ना पहुंचावे। जिस आहार ने दूजिया नू चोट पहुंचाई है, ए आहार इस नू भी चोट पहुंचाएगा, एदे तन नू रोगी करेगा, एदे मन नू पीड़ित करेगा। करीबन करीबन 90% मनुख दी अज खुराक ऐसी है दूजिया नू चोट पहुंचा के हासिल कीती जा रही है, तो चोट पहुंचा के हासिल कीती गई खुराक खुराक भी चोट पहुंचाएगी, खुराक भी जरब करेगी। इस वास्ते गुरु नानक दा ए फैसला, बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। हे बाबा, हे मेरे मित्र, हे सियाणे, सुचेत रह, तेरे शरीरक रोगां लई, तेरी मानसिक पीड़ा लई 90% ते जिम्मेवार है तेरा आहार। तो जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं, वो विचार दे प्रति सुचेत नहीं हो सकदा। जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं, वो अपने शरीर दे प्रति भी सुचेत नहीं हो सकदा। और जो शरीर ते मन दे प्रति सुचेत नहीं, उन्हूं सभ्य नहीं कहा जा सकदा, असभ्य मनुख है,
अजे उस नूं सभा विच बैठण दी जाच नहीं आई, अजे उस दे अंदर पूर्ण तौर ते मनुखता प्रगट नहीं हुई, तो प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अपना उपदेश अपना संदेश खाने तो आरंभ करदे ने, फिर दूसरा आप पहनण दा उपदेश देंदे ने। रता पहनण मनुरता सुपे दी सतदान नीली सिहाही कदा करनी पहरण पैर ध्यान कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम बाबा होर पैनन खुशी खुआर जित पैदे तनु पीड़िए मन में चले विकार। खान पीन तो बाद पहनन दी मनुख सोचदा है, और ये सिर्फ मनुख ही सोचदा है या इंज कह लो पहनन तो ही मनुखता आरंभ होंदी है। पहनन बारे पशुआ ने नहीं सोचे, पंछिया ने नहीं सोचे। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते कहंदे ने विस्माद नांगे फिरे जंत, इन्ना नंगे पशुआ नू देख के मैं ते विस्मादमयी हो जांदा, विस्मय हो जांदा है। इन्हां दे अंदर पहनण दा ख्याल नहीं पैदा होया, ये इस तरह दे नाल नग्नता दी प्रदर्शनी कर रहे ने। एक मासूम बच्चा नवजायद बच्चा उस दे अंदर भी अजे पहनण दा भाव नहीं पैदा होया। ए गल वखरी कि चीथड़ियां विच कपड़ियां विच मां बाप उस नूं लपेट के रखदे ने, पर पहनण दा भाव अजे उस दे अंदर नहीं पैदा होया। इस वास्ते कह देंदे ने ए मासूम बच्चा अजे असभ्य है। सभ्यता ते बुद्धि दे विकास दे नाल नाल ही हुंदी है, तो अजे बौद्धक विकास नहीं होया। ए बच्चा मासूम इस तरह नगन निर्दोष है जिस तरह के पशु नगन निर्दोष ने। मनुखता नहीं आरंभ हो सकी, मनुखता सोचण नाल आरंभ हुंदी है, और पशु सोच दे तो लाजमी वो पहनण लई भी सोच दे, और नगनता उन्हां नूं महसूस हुंदी है। या इंज कह लो मनुखता इत्थों ही आरंभ हुंदी है जद नगनता महसूस होण लग पे। यही कारण है कि जिस दे अंदर मनुखता ना आवे, साडी भारतीय परंपरा दे मुताबिक कह देंदे ने ये मनुख बहुत नंगा है, बिल्कुल नंगा है। नंगे तो मुराद अजे इस दे अंदर ते पहनण दा ख्याल भी नहीं, इस ख्याल दे नाल ही मनुखता दा जन्म है। वरना खाण पीण दा ख्याल ते पशुआं दे अंदर भी है, ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं अगर मनुख दे अंदर है। मनुखता आरंभ होई पहनना है, ढकना है, कुछ आजा ढकने ने, मैज इसलिए ढकड़े ने कि मनुख दा शील संजम दे चरवे, मनुख दियां वाशनावां शील संजम दे चरेन, मनुख दे मानसिक वेग मर्यादा दे जहन नगनता उतेजना पैदा कर सकती है, नगनता भड़काऊ हो सकती है। यही कारण है भड़के हुए मनुख नूं, और जिसने अपनी वासना उजागर कर रखी हुए आले दुआले कह दिता जांदा है नगन है, नगन है। पहनना तो इस वास्ते सी कि नगनता नूं ढकना है, ते नगनता नूं इस वास्ते ढकना है कि भड़कियां हुईयां वासनावां नूं जो है ढकना है, मनोबिरतियां नूं ढकना है। लेकिन कपड़िया दे राही वाशना नूं उजागर करन दा ख्याल पैदा हो जाए, कपड़े ही वाशना दी प्रदर्शनी करन लग पैन, तो एक कपड़िया दा गलत इस्तेमाल है। जैसे खाना पीना ते इस वास्ते सी कि शरीर दी भुख मिटे ते तंदुरुस्ती मिले, पर खाना पीना ही रोगी कर देवे, विकारी कर देवे, तो ए मकसद दा हल ना होया। खाने तो जो लक्ष्य की पूर्ति होनी सी भुख मिटे ते शरीरक तवानाई की प्राप्ति होवे, भुख जरूर मिटी है
लेकिन तंदुरुस्ती नहीं मिली, बीमारी मिली है। मानसिक विकार मिले ने, खाने का लक्ष्य पूरा नहीं होया। पहनने का तो लक्ष्य ए सी वाशना ना भड़के, और दूजियां दियां वाशनामां भी सीमा दे च रहन। नग्नता प्रगट ना होवे, खास करके विपरीत नग्नता तो बिल्कुल प्रगट नहीं होनी चाहिए, मनजर आम ते नहीं होनी चाहिए। पर कपड़िया दे चों नग्नता प्रगट होवे, कपड़े ही वाशना दी प्रदर्शनी करन। ऐसा हो सकता है अगर कुछ खाना पीना रोग पैदा कर सकता है, जबकि खाना पीना रोग लई नहीं, तो कुछ पहनना भी विकार पैदा कर सकता है, जबकि पहनना विकारा लई नहीं है। इस वास्ते इस पैरे दी भी मुख पंक्ति देच गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर देने, बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़ी है, मन में चले विकार। हे सियाणे, ओ पहनना जो तन दिच खुआरी पैदा करे, मन दिच विकार पैदा करे। इस संबंध च इंज कह लो, जब देच ए पहले विचारक ने गुरु नानक देव जी महाराज जिन्हां ने सोच रहा है कि कुछ पहनना भी विकारा नू जन्म देंदा है, कुछ पहनना भी खुआरी नू जन्म देंदा है। पैगंबरी पुरुषां दे चों, अवतारी पुरुषां दे चों, चोटी दे सिरमौर संतां दे चों, ए पहला उपदेशक है जो पहनण वाले भी कहिंदा संजम चाहिदा है। जिथे खाण पीण बारे संजम चाहिदा है, सोच चाहिदी है, मर्यादा चाहिदी है, उथे पहनण बारे भी आपने शिक्षा दिती है। कुछ ऐसा पहनना जो शरीरक रोगां नू जन्म दे सकदा है, कुछ ऐसा पहनना जो मन विच विकारां नू जो है जन्म दे सकदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, अगर इस तरह दियां मनोबिरतियां आवन तो मनुख ऐसे सादे कपड़े पहनेगा, ओ लिबास नहीं जो दूजियां दी वाशनावां विच उतेजना पैदा करन ते अपने मन नू भड़कान। पहनना तो इस वास्ते सी कि मैं ढकिया जावा, ते जे पहनना इस वास्ते होवे कि मैं प्रदर्शित होवां, मैं प्रगट होवां, मैं दिसा, तो यह तो इस तरह है जिवें किसी औषधि तो बीमारी लभण की कोशिश की जावे, किसी दवाई तो रोग लभण की कोशिश की जावे। पहनना सी अपने आप नू ढकण लई, लेकिन अजोके युग दे च पहनना हो गया है अपने आप नू प्रगट करन लई। बहुते मनुख अज कपड़िया दे राही अपने आप नू प्रगट करदे ने, बाकी तो उन्हां कोल कुछ है नहीं। पहनना ही पहनना है, पहरावा दसदा है, कपड़ा ढकण लई सी। इस्लाम ने ऐसा पर्दा दे दिता, ऐसा ढकया, मनुख गायब हो गया, पर्दा ही पर्दा रह गया, कपड़ा ही कपड़ा रह गया, मनुख ना दिसया। ईसाइयत ने इतनी नग्नता दे दिती, इतनी नग्नता दे दिती, तो नग्नता ही नग्नता रह गई, कपड़ा ओले हो गया। दरम्याना दरम्याना ढंग, दरम्यानी अवस्था धन गुरु नानक देव जी महाराज ने चुनी, वो कपड़ा ही नहीं कि मनुख नू बिल्कुल ढक देवे, कपड़ा ही दिखाई देवे, मनुख ना दिखाई देवे। पर वो नग्नता भी नहीं कि नग्नता दिखाई देवे, कपड़ा होवे ही ना। देखदे हां असीं किधरे मनुख नू देखिए तो कपड़े दे दर्शन होंदे, मनुख दे नहीं। चादर है, बुरका है, और अनेकां तरह दे पर्दे ने, तो कपड़ा दिखाई देंदा है, मनुख नहीं। पर है किधरे ऐसी नग्नता, उस नग्नता दे च भड़काऊ वाशनावां ही दिखाई देंदियां ने, भड़किया होया मन ही दिखाई देंदा है, भड़किया होया तन ही दिखाई देंदा है। लिबास नहीं, कपड़े नहीं। एक बड़ी सुंदर गाथा है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी सुपत्नी साड़ी जगत माता गंगा उन्होंने कहा, जे थानू संतान चाहिए तो इसका आशीर्वाद तुसी बाबे बुढ़े तो प्राप्त करो। सिख नू मान देंदे ने गुरुदेव, असीस लो, आशीर्वाद लो।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤਨ ਸਜਾਇਆ ਬਸਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਜੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਸਖੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਚੱਲ ਪਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲਵੇ, ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਵੇ, ਤੋ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਬਾਸ ਇਹ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੁੱਖ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨਾ ਭੜਕਾਊ ਲਿਬਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਭੜਕੀਲੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਾਉ ਰੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਜਾਇਆ, ਰੱਥ ਸਜਾਇਆ, ਸਜੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਥਾਲ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਚਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਰੱਥ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੋ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨੀ ਪੈ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਹਿਣੇ ਇਹ ਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਤੋ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਐਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪਏ, ਤੋ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਖੜਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਚ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੋ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਗੰਡਾ ਥਾਲ ਦੇ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਥ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਜਦ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ 20 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਫਿਕਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਕੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕਦਮ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਥਲ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੋੜਿਆ, ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈਏ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਗੰਡਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਉਂ ਮੁੱਠ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ, ਆਖਿਆ
ओ लाल मां तेरी कुख तो जन्म लवेगा जो दुष्टां दे सिर इंज बनेगा जिवे मैं इस प्याज नु तोड़े। ए वाक प्रगट होया दल भंजन गुरु सूरमा वड योधा बहु परोपकारी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जन्म आप दी कुखों होया। मीरी पीरी दे मालक तलवार दे धनी और शस्त्रां दे धनी सूर वीरता जिन्हां दे रोम रोम दे चों जो है प्रगट होंदी सी और जिन्हां दे चेहरे तो भक्ति भाव हर वक्त प्रदर्शित होंदा सी ऐसे मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जन्म वक्त दे एक महान फकीर गुरु घर दे एक महान आशिक संत बाबा बुढ़ा जी दे आशीर्वाद नाल होया। पर इस आशीर्वाद दे पिछे एक बहुत वड्डी कहानी छुपी हुई है कि किसे भी संत कोल आना है दर्शन देन लई नहीं दर्शन करन लई। एदे च कपड़ियां दा बहुत वड्डा योगदान है। कपड़े कुछ ऐसे होंदे ने जो मन दे अंदर ख्याल पैदा करदे ने मैं दर्शन देने ने और कपड़े कुछ ऐसे ने जो पैदा करदे ने ख्याल मैं कुछ भी नहीं मैं ते दर्शन करने ने मैं ते दूजे दे जो है दर्शन करने ने। इस संबंध च एक होर भी बड़ी सुंदर गाथा है भगत कबीर जी दे डेरे एक ऐसी पनहारी सी जो गंगा तो रोज पानी भर के ल्यांदी है मटकियां दे रहे और सारा दिन प्यासियां दी प्यास बुझांदी है ठंडे जल नाल रसना नाल परमात्मा दा नाम जपदी है अपने मन नु शीतल करदी है ते दूजियां नु शीतल पानी पिला पिला के प्यास बुझांदी है अगलियां दे तन शीतल करदी है। इस तरह मन दे तलते उसदे सिमरन चलदा रहंदा है तन दे तलते उसदी सेवा चलदी रहंदी है। सेवा सिमरन दी ए मूर्ति अपना जीवन कबीर जी दे डेरे च इस ढंग नाल बतीत कर रही है। लेकिन एक ऐसी घटना घट गई कबीर जी दे कुछ चेले शिवरात्रि वाले दिन गंगा तट ते की देखदे ने कि वक्त दे बादशाह दी बेगम सिकंदर लोधी दी बेगम हिंदू यात्रियां नूं देखण लई आई है कि वो इत्थे आके की करदे ने किस तरह दे धार्मिक रस्मों रिवाज नूं ए प्रचलन करदे ने ए अपनांदे ने ए देख रही सी। जिथे ओ धार्मिक रस्मों रिवाज लोकी निभा रहे ने कर रहे ने देख रही है उथे कबीर दे चेले सिकंदर लोधी दी बेगम नूं देखदे ने और मैज इस वास्ते देखदे ने कि इतने कीमती कपड़े और जर्री दा कम है मोती जड़त ने किधरे किधरे नीलम भी चलम चमकदे पए ने वस्त्रां दे चों कपड़ियां दे चों। एकदम ख्याल आया उस पनहारी दा जो सारा दिन डेरे दे प्यासियां दी प्यास बुझांदी है ठंडे जल नाल गंगा तो भर के ले जांदी है सारा दिन जिसकी रसना ते सतनाम दी धुनी चलदी है। कबीर पंथियां नूं सतनामी कहंदे ने पर उसदे बस्तर लीरां लीरां ने उसदे कपड़े ते बिल्कुल फटे हुए ने मन दे ते एक शक दा बोझ पै गया ते शक ही सब तो वड्डी मैल है संसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए मैला हिरदा कौन। जो परमात्मा दे प्रति शक नाल भरे होया निर्मल हिरदा कौन जो परमात्मा दे प्रति विश्वास नाल भरे होया। जितना किसदा विश्वास वद्दा जा रहा है उतनी निर्मलता वद्दी जा रही है और जितना किसे दा संदेह वद्दा जा रहा है मैल वद्दी जा रही है और संदेह ही संदेह रह जाए विश्वास रह ही ना ऐसा मनुख दुष्ट हो जाता है ऐसा ही मनुख जालम हो जाता है ऐसा ही मनुख चोर हो जाता है ऐसा ही मनुख दुराचारी हो जाता है ऐसा मनुख महान जालम हो जाता है क्योंकि परमात्मा दे प्रति संदेह ही संदेह है और ऐसा मनुख पुनीत हो जाता है भगवंत दा रूप हो जाता है भरोसा ही भरोसा है संदेह ते है ही नहीं।
केवल भरोसा है। ऐसा मनुख अठे पैर समाधि लीन आउंदा है, जां के हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगट आया। ऐसा मनुख जो भरोसे ते भावना नाल भरिया होया अठे पैर समाधमई आउंदा है, समाधि लीन आउंदा है, अठे पैर प्रभु नाल जुड़िया हुंदा है, निर्मलता दी खाण हुंदा है। ओ निर्मलता दी मूर्ति कबीर दे चेले कबीर दे अगों फरियाद करदे ने, साडे अंदर संदेह पैदा हो गया, की करिए इस पनहारी नु वेख के और सिकंदर लोदी दी बेगम नु वेख के। इन्ने कीमती कपड़े, इतना कीमती लिबास, पता नहीं उसकी जबान चो कदी परमात्मा दा नाम निकलिया भी है कि नहीं। तो कबीर दे बड़े दो कीमती श्लोक ने इस संबंधित, कबीर दे श्लोकां दी बाणी है। आप कहने कबीर हैंगे बाहन सघन घन, छत्रपति की नार तासो पटंतर ना पुजे हर जन की पनेहार। जो हरी जन दी पनहारी है, सारा दिन हरी दे जना नू पानी पिलांदी है, सेवा कर दी है, इस दे कपड़े इतने महान ने कि उस बादशाह दी बेगम दे कपड़े इस कपड़ियां दे सामने तुच्छ ने। तासो पटंतर ना पुजे हर जन की पनहार। तर्क खड़ी हो गई, भगत जी वो कपड़े मखमली ने, नीलम जड़त ने, जर्री दा कम होया उना थे, ए कपड़े खद्दड़ देने, लीरा लीरा ने, टाकिया ने, थां थां तो पाटे हुए ने, सिले हुए ने, इते चीथड़े ने, इना नू आप कहंदे हो इतने महान ने कि उस बादशाह दी बेगम दे जिहड़े बस्तर ने बिल्कुल तुच्छ, बिल्कुल मामूली। तो कबीर इसका बड़ा सुंदर जो है जवाब दें दे रहे हैं। कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान, मैं हरी दी चेरी नू मान क्यों दे दिता, मैं इना चीथड़िया दी इतनी उपमा क्यों कर दिती, मैं इतने सादे लिबास दी इतनी महिमा गायन क्यों कर दिती, और इतना कीमती लिबास जर्री नीलम दा कम जिस दे च, मैं उसनु भंडिया क्यों, मैं उस दे निंदा क्यों की थी। दूजियां दे तर्क अजे जबान ते नहीं आए, लेकिन फिर भी कबीर जवाब दे रहे ने, समझा रहे ने, कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवारे विखे को ए सिमरे हरि नाम। इदे सादे कपड़िया दे च हरी दा नाम है, उदे भड़कीले लिबास दे च प्रदर्शनी है, वाशना दी नुमाइश है। उदे कपड़िया नू देख के दूजियां दियां वाशनावां भटक दियां ने, भड़क दियां ने, प्रगट होंदियां ने। इदे सादे लिबास नू वेख के लोगां दी जबान ते सतनाम, सतनाम दा जप चल रहा है। जिन्हां कपड़िया नू देख के भगवान चेते आवे, मैं उसकी उपमा करा, या जिन्हां कपड़िया नू देख के शैतान दा जो है चेता चले, मैं उदी महिमा गायन करा। वाकई ऐसा है लिबास जिन्हू वेखदे आई शैतानियत प्रगट होंदी है, शैतान दे दर्शन होंदे ने, और है ऐसा लिबास जिन्हू वेखदे आई भगवान दे दर्शन होंदे ने, प्रभु दे दर्शन होंदे ने। खाण पीण दी सावधानी तो बाद जो मनुख अपने वस्त्रां दे प्रति सावधान नहीं, धर्म दी चरम सीमा नू छू नहीं सकेगा, बुलंदियां नू छू नहीं सकेगा। या इंज कह लो, जद भी किसे दे पैर बुलंदियां दी तरफ रागब होंदे ने, उदे पहरावे दी सादगी आनी आरंभ हो जाती है, उस दे पहरावे दी कोमलता आवनी जो है शुरू हो जाती है। मनुख दी खान पीण दी कमजोरी तो बाद ये दूसरी कमजोरी है। खाना पीना जबान दे रस करके बेमर्यादा चला जांदा है, पहनना वाशना करके और अहंकार करके अपने आप नू प्रगट करना है। और जैसे कोई कपड़े दे राही अपने आप नू प्रगट करदा है,
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਨਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਮ ਫਕੀਰੀ ਸਮਾਜ, ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫੋਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਇਕ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਪਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁਪ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਪਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਪਹਿਣਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜੁਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸਮਤ ਲੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਗਨਤਾ ਔਰ ਅਰਧ ਨਗਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਲ ਯੁਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਨਾਰਦ ਨਾਚੇ ਕਲ ਕਾ ਭਾਵ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹੇ ਰਾਖੇ ਭਾਵ। ਮਨ ਨਾਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਨਗਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਤੀ ਤੇ ਸਤੀ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਰੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਮਨ ਰੱਤਾ ਸੁੱਪੇ ਦੀ ਸਤਦਾਨ। ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਨੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਗੂੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੁਣ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਪੇ ਦੀ ਸਤਦਾਨ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ ਜੋ ਦਾਨੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕੜਾ ਕਰਨੀ ਪੈਰਣ ਪੈਰ ਧਿਆਨ, ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ। ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਰਣ ਪੈਰ ਧਿਆਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਏ ਤਿੱਲੇਦਾਰ, ਜੋ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਪੈਰ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਣ ਪੈਰ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਜੋ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਏ। ਕਮਰ ਬੰਦ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਨ ਜੋ ਬਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧਨ, ਉਹ ਹੈ ਜੋਬਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਜੋ ਇਕ ਸਵਪਨ ਉਜਾਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਪੈਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਧਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਬਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਸਲੀ ਧਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਐਸੇ ਪਹਿਨਣੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ।
धन गुरु नानक देव जी महाराज का यह मूल संदेश उपदेश खान पीन पहनण दे बारे जिस दे बहुत वड्डी सच्चाई है जो इस तल ते संजमी नहीं ओ प्रमात्मा दे मार्ग दा पांदी भी नहीं है।

ঘোড়ে পাখর সোয়নে সাখতে বুঝন তেরি বাট তরকস তীর কমান সাঙ্গ তেগ বন্দ গুণ ধাত वाजा नेजा पतसों परगट करम तेरा मेरी जात बाबा और चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार। एक ऐसा पावन पवित्र गुरु नानक देव जी महाराज का महावाक है जिस विच जीवन नू बुलंदियां ते किवें लै जाइए और जीवन दे विचकार रुकावटां केड़ियां केड़ियां ने इहदी पूर्ण तौर ते सूझ समझ वक्त दे अवतारी पुरश धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कराई है। इतनी गल ते स्पष्ट है प्रथम शरीर है फिर मन है फिर आत्मा है। सारे दा सारा पशु जगत शरीरक तल ते जी रहा है लोड़ां दे तल ते जी रहा है पर मनुख लोड़ां दे नाल नाल शरीर दे नाल नाल मानसिक तल ते जी रहा है ते मन दियां अपनियां कुछ कामनावां ने मन दियां अपनियां कुछ इच्छावां ने और इना कामनावां ने बहुत वड्डे पसारे नूं जन्म दिता है। इतना जीवन वड्डा ने जितना पसारा वड्डा हो जांदा है और इस नाल मानसिक तनाव वध जांदा है। इस वास्ते मनुख सिर्फ शरीरक तल ते ही रोगी नहीं मानसिक तल ते रोगी है। शरीरक तल ते ते शायद कोई कोई रोगी होवे पर मानसिक तल ते ते सतगुरु कहिंदे ने जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। तो प्रथम शरीर दे तल ते मनुख सावधान होवे सतगुरदेव जी महाराज खान पीण दा संजम दसते ने और साफ कहंदे ने बाबा और खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ओ खाना जो वक्ती तौर ते खुशी देवे ते बाद विच विकार पैदा करे ओ खाना जो वक्ती तौर ते रस देवे पर बाद विच बेरसी नूं पैदा कर देवे और शरीर नूं रोगी कर देवे सतगुरु उस तों जो है वर्जदे ने। इह गल वखरी है कि शरीर अलग अलग ने कोई वाई प्रधान शरीर है कोई कफ प्रधान शरीर है और कोई पित्त प्रधान। अपने शरीरक स्वभाव नूं वेख के खाणियां प्रति जो सुचेत हो जांदा है वो शरीरक पीड़ा तो बच जांदा है मानसिक विकार तो बच जांदा है और जैसे शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे एकदम पहनण दी दुनिया आरंभ हो जांदी है। पर पहनना सिर्फ प्रदर्शनी वास्ते होवे पहनना सिर्फ नुमाइश होवे पहनना अपनी बिरती नूं भी बार मुखी करे ते दूजियां दी बिरती नूं भी अपनी तरफ खिंचे ऐसा पहनना भी मानसिक विकारां नूं जन्म देंदा है। तो सतगुरु उस तों भी सानूं वरजदे ने बाबा होर पहनण खुशी खुआर जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। अगां चल के मेरे पातशाह मन दी उस अवस्था का जिक्र करते ने जद तन तो मनुख निश्चिंत हो जाए ते मन बड़े पुरजोर ढंग नाल मंग करन लग पैंदा है। और यही एक ऐसा शब्द है जिस दे चार रहाव ने चार ठहराव ने ए अपनी तरह दा इंज कह लो एक महान शब्द है जिस दे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार रहाव ने। चार रहावां विच भाव चार भाव सतगुरां ने साडे सामने रखे ने प्रथम शरीर
और शरीर दे खान पीन दा मसला हल होवे तो फिर पहनना, और पहनना भी ऐसा हो जाए कि अपने आप नू नुमाइश करन दा चाव पैदा होवे ते दूजियां दी बिरकती नू भड़कान दा मसला खड़ा होवे। साहिब कहिंदे नहीं, ए भी खुआरियां नू जन्म देंदा। खान पीन पहनन दे मसले तो जैसे मनुख निश्चिंत हुंदा है तो फिर मन दी दुनिया सामने आउंदी है। कहिंदे ने पशु सुखी ने क्योंकि अक्सर प्रकृति उन्हां दियां शरीरक लोड़ां दी पूर्ति कर देंदी है, पर ए जो मन है मनुख दा ए ऐसा है कि शरीरक लोड़ां दी पूर्ति हो जाए और जितनी ज्यादा हो जाए ए उतना ही भयंकर रूप विच मंग करन लग पैंदा है। इत्थे मनुखी मन ने बड़े भुलेखे खादे ने और मनुख ने बड़े संपन्न तरह दे मनोरंजन दे साधना नू जन्म दिता है। जिड़े जिड़े देश जितने अमीर ने, जिड़े जिड़े घराने जितने ज्यादा संपन्न ने, देखे उत्थे मानसिक बेचैनी उतनी ज्यादा है। सतगुर आप भी कहंदे ने कि वडे वडे जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। महाराज कहंदे ने दुनिया दे तमाम वडे मनुखां ते निगाह मारनी। वडे मनुख कौन? जिन्हां कोल धन संपदा ज्यादा है। को न वडा माया वड्याई, गुरबाणी दी व्याख्या गुरबाणी जो है कर दी है। ए मनुख वड्डा नहीं, ए वडपणा धन ते खड़ा है, ए वडपणा संपदा ते खड़ा है, ए वडपणा प्रभुता ते खड़ा है, सता ते खड़ा है। और जितनी ज्यादा धन संपदा है उतनी ज्यादा प्रभुता है, जितनी ज्यादा सता है उतनी ज्यादा प्रभुता है, और जितनी ज्यादा प्रभुता है महाराज कहंदे ने उतना ही वड्डा है, और जितना ज्यादा वड्डा है उतनी ही ज्यादा चिंता है। बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। इसनू एक होर ढंग नाल भी धन गुरु नानक देव जी महाराज ने खोले है, जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे भरमंता। जिसको ले धन संपदा ज्यादा है उथे अधिक चिंता है, पर जिथे लोड़ जोगा भी नहीं उथे भटकना है, उथे मन विच भरम ने और उथे बहुत धावना है, उथे बहुत भटकना है। एक थां ते भटकना है और उस भटकन विच भुलना ने। इस वास्ते आम कह दिता है कि गुनाह गरीबी तो जन्म लेंदे ने, गरीबी मुफलसी गुनाहां दी जननी है, गुनाहां दी मां है। मजबूरियां मनुख नूं रसातल विच ले जांदियां, धरातल दे जहर ले जांदियां ने। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने जिथे लोड़ां दी पूर्ति नहीं हो रही उथे ते भटकना है, और जिथे लोड़ां दी पूर्ति तो भी अधिक है उथे चिंता है, बड़ी भयंकर जो है चिंता है। जितने संपन्न देश ने उतने ज्यादा चिंतातुर ने, और जितने संपन्न घराने ने उतने ज्यादा चिंतातुर ने, और जितने ज्यादा चिंतातुर ने उत्थे उतने ज्यादा मनोरंजन दे साधन मुहैया किते जांदे ने, उपलब्ध किते जांदे ने मनोरंजन। गरीब अजे जिस दियां तन दियां ही लोड़ां दी पूर्ति नहीं हुई, अजे तन दा ही मसला हल नहीं होया, अजे तन ते चीथड़ा नहीं है, अजे पेट दे च रोटी नहीं है, इनू मनोरंजन नहीं चाहिए। शरीर सब तो अगे है, अजे शरीर दा मसला हल नहीं होया तो मन पिछे खड़ा है, मन नंबर दो ते खड़ा है। जिस वक्त भारत संपन्न सी और ईरानिया अफगानिया ने तुर्की लोगां ने इनू सोने दी चिड़िया आख्या, उस जमाने च इस देश दे घर घर दे संत पैदा हो रहे सन, देवते पैदा हो रहे सन, देवियां पैदा हो रही सन। धन संपदा बहुत सी, शरीर दा मसला हल हो गया सी, मन दे मसले नू परमात्मा दे नाम नाल हल कर रहे सन, प्रभु चिंतन नाल हल कर रहे सन। चाहे थे राजकुमार सिद्धार्थ होवे, चाहे महावीर होवन, आखिर राज घरानियां दे फरजंद सन,
इन्हों ने भी अपने मानसिक मसले प्रभु चिंतन नाल हल किए, आत्म अभ्यास नाल जो है हल किए। करीबन करीबन इस देश दे राज घरानिया दे चों धर्म दी सुगंध फैली, धनाढ़ मनुख प्रभु दे मार्ग ते चले, और जब धनाढ़ चल पैन सताधारी चल पैन तो दूसरा वर्ग उन्हां दे पिछे चल पैंदा है, स्वाभाविक है। अक्सर छोटा वड्डे दी नकल करता है, निर्धन धनवान दी रीस करता है। तो जो थोड़े जिया भी तलते पछड़े सन दरम्याने सन उन्होंने राज घरानिया दे ए जो राजकुमार सन इन्हां दी नकल की थी, राजिया दी नकल की थी, राजे जोगी बन रहे ने, राजकुमार संत बन रहे ने। तो इस देश दे ऐसी हवा चली घर घर दिच देवी, घर घर दिच देवता, गली गली दिच संत, और अज तक वो पुरानी हवा दे कुछ झोंके मौजूद ने कि सारी दुनिया च अज भी कहंदे ने हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, हिंदुस्तान देवी देवतावां दा देश है, हिंदुस्तान गुरु पीर पैगंबरां दा देश है, जोगियां दा देश है, आत्म ज्ञानियां दा देश है। पर ए आत्म ज्ञानियां दा देश सी अज नहीं, ए ऋषि मुनियां दा घराना सी अज नहीं। संपन्न लोगा ने अपना पूरा समा अपनी पूरी शक्ति आत्म अभ्यास दे खर्च की थी, तो सहजे सहजे की होया धन दी फिक्र ना की थी, संपदा दी फिक्र ना की थी। संत पैदा होंदे गए, ऋषि मुनि पैदा होंदे गए, अवतार पीर पैगंबर पैदा होंदे गए, तो धन संपदा दी ते फिक्र ना की थी, मुफलसी भी पैदा होंदी गई, और मुफलसी चरम सीमा ते पहुंच गई। और अज असी देखदे आं कि हिंदुस्तान अज उन्हां देशां दी तरफ निगाह करदा है जिथे संपन्नता है, ते जिथे संपन्नता आ गई है वो आत्म अभ्यास लई हिंदुस्तान दे दरवाजे खटखटा रहे ने, वो योगियां दे आश्रम लभ रहे ने, वो आत्म अभ्यास दे केंद्र लभ रहे ने। संपन्न हो गया अमेरिका, योगी शब्द दी उत्थे महिमा वध गई है, योग दी महानता वध गई है, आत्म अभ्यास दी उमंग ते तरंग वध गई है, लेकिन धन संपदा दी तरंग ते उमंग हिंदुस्तान दे च वध गई है। अज धन दी खातर इस देश दे धर्म नू छोड़िया जा सकदा है, पर उस देश दे च ऐसा है कि धर्म दी खातर धन नू छोड़िया जा सकदा है। संपन्न घरानिया दे बच्चे हिपी बन गए, छोड़ गए सारे ऐशो आराम नू, हर तरह दे सुख नू, और उन्होंने बुलंद बांग कह दिता आत्मक चैन चाहीदी है, सुकून चाहीदा है, शांति चाहीदी है, प्रभु चाहीदा है, आत्म प्रकाश चाहीदा है। तो खैर जैसे जैसे शरीर दा मसला हल होवे, मन बड़े भयंकर रूप दे सामने आउंदा है, और शरीर पहले इदा मसला पहले हल करना पैंदा है, और इदा मसला है खाना पीना पहनना। पर ए संजम दे च ना होवे तो खाना पीना भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा। ए पहनना अगर संजम दे च ना होवे, मर्यादा दे च ना होवे, तो ए भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा। और तन दियां सारियां लोड़ां पूरियां हो जान ते मन जद बड़े भयंकर रूप दे सामने आवे, तो हुण इस मन दी वास्तविक लोड़ की है। करीबन करीबन दुनिया दे अजोके सियाने मनुखा ने ऐसा समझ लिया मनोरंजन मन दी लोड़ है। नाटक चेटक तरह तरह दे रंग तमाशे रंगीनियां, इस तरह दे मनोरंजन दे साधन संपन्न घरानिया दे नवे तो नवे पैदा हो रहे ने, लेकिन मन दी एक अपनी एक अवस्था है, जिस चीज नू एक दफा वेख लवे ओनू पुराना कर देंदा है, ते पुराने दी मन परिक्रमा नहीं करदा, मन अग्गे जांदा है, मन गतिमान है, इदी गति बड़ी तीक्ष्ण है, और ये रुकदा नहीं, ये लंघ जांदा है, और लंघ के हर चीज नू पुराना कर देंदा है, हर वस्तु नू पुराना कर देंदा है,
ਰੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਪ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਪੰਨ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਮਕਾਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਨੌਬਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਬਦਲਣਾ, ਪਤਨੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੈਸੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਣਕਣਾ ਦੇ ਕੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਂ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਛਣਕਣਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਛਣਕਣਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਹੱਥ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਪਸਾਰਨੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੂ ਬਹੁ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਸੰਪੰਨ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਣਕਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਥਾਈ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸਨੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਾਇਮੀ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਥਾਈ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਥਾਈ ਖੇੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਈ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਇਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰਰੀਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਤਲਵਾਰ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਰ ਕੋਲ ਹੋਵਣ, ਪੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੋਵਣ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਇਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੀ, ਇਕ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਬਹਿਲਾਵਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੋਇਨੇ ਸਾਖਤ ਬੂਝਣ ਤੇਰੀ ਵਾਟ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮਾਨੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਤਸਦ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਉਸਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਘਰ ਚੋਂ 4 ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਾਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸੀ, ਮਹਿਮਾਨ, ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਸੱਡ ਕਰੇ ਨਿਘਰਿਆ ਘਰ ਆਓ, ਸਰਪਰ ਮੈਥੇ ਆਵਣਾ ਮਰਨੋ ਨਾ ਡਰਿਆਓ, ਤਨ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਘਰ ਕਬਰ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ, ਐ ਤਨ ਕਬਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ, ਕਬਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਸੱਡ ਕਰੇ। ਗੋਰ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਸੱਡ ਕਰੇ ਨਿਘਰਿਆ ਘਰ ਆਓ, ਸਰਪਰ ਮੈਥੇ ਆਵਣਾ ਮਰਨੋ ਨਾ ਡਰਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ, ਐ ਤਨ ਤੇਰਾ ਘਰ।

सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिंदगी बड़ी थोड़ी है और रस्ते ही कोई मनुख बदलता रहे तो जिंदगी रस्तियां ची खत्म हो जाती है, मंजिल तक पहुंचना औखा हो जाता है। ये छोटी जी जिंदगी कोई एक रास्ता चुन लेना चाहिए और बड़े प्रमाणिक रस्ते जगत देश बने शाहरा। साडे देश दे चार वडियां शाहराहां बनियां, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन मत, गुरु मत, सिख मत। इस तरह इस देश तो बाहर भी चार वड्डे शाहराह बने, शाही रस्ते, सरकारी रस्ते, बहुत वड्डे महान और खूबसूरत रस्ते, इस्लाम, ईसाइयत, यहूदी, पारसी। पर कई दफा मनुख की अपनी आदत होंदी है विंगे टेढ़े रस्ते ते चलना, कदी कदी शाहराह ते चलन वाले उकता जांदे ने मंजिल नू दूर समझ के, तो विंगा टेढ़ा चलन लग पैंदे ने और विंगा टेढ़ा चल के भटक जांदे ने, पर कदमां दे निशान ते बन जांदे ने उनां दे, उनां दे कदमां दे निशानां दे उत्ते दुनिया होर चलन लग पैंदी है और इस तरह विंगे टेढ़े रस्ते बन जांदे ने, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਚ ਹੀ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹਿੰਦੂ ਮਤ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਬੌਧ ਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਚ ਬਣੇ। ਨਿਕਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਡੰਗੀ ਚਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਟਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਭਟਕਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ और उन्हां ही निशानियां नूं कईआं ने मार्ग समझ के चलना शुरू कीता तो भटके हुए रस्तियां दे उत्ते चलण वाले भटक गए। शाहरा अज भी असीं देखदे हां उन्हां ते कोई बहुत भीड़ नहीं है। बकौले भगत कबीर, जह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। जिस रस्ते ते चतर चलाक मनुख चल पे बड़ी भीड़ चल पई, तार्किक बंदा तर्क करन वाला, जैसे रस्ते च औगढ़ घाटी आई पहाड़ आया उन्हें किनारा कशी की थी और किनारा कशी कर दिया ही भटक गया। और ए पहाड़ जिन्होंने अबूर नहीं करना सी उन्हें ये भटकन चंगी लगी तो उसके पिछे चलन वाले भी भटके, और इस तरह दे भटकन वाले दे करके चलन करके रस्ते बने। ये भटके हुए रस्ते करीबन करीबन सारी दुनिया दे जो है मौजूद ने, जिन्हां दे उते चल के मनुख प्रभु तक ते नहीं पहुंचता, भगवान तक ते नहीं पहुंचता, पर हां रस्तियां दे भटक के रह जांदा है और ए साफ दिखाई देता है। इस वास्ते एक आलम नु कहना पया, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिथे रास्ता कठिन दिखाई देवे मनुख उथे रास्ता बदलने की जो है कोशिश करता है, ते प्रभु दा मार्ग मैदानी रास्ता नहीं है, पहाड़ी रास्ता है। एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर, इसे नु रविदास कहंदे ने, घट औघट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये से एक बेनती मेरी पूंजी राख मौड़ा। औघट घाट उसनु कहंदे ने जिस दे ते चढ़ना बहुत कठिन होवे, जिस तो लंघना बहुत कठिन होवे और चढ़ाइया ते दम फुल जाए। इस तरह का ही परिपूर्ण परमात्मा का मार्ग है, क्योंकि सुरत नूं बुलंदियां ते लै जाना है, उचाइया ते लै जाना है। इन्हां उचाइया तो जो भी घबरांदे ने रस्ता बदलदे ने, और पहली दफा जो रस्ता बदलदा है वह भटकिया वाला इंसान उहदे कदमां दे निशान पक्के रस्ते बना देंदे ने, और उस एक दे भटकन करके बड़ी दुनिया भटकदी है। और इस तरह की भटकन करीबन करीबन सारे जगत दे जो है मौजूद है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, यही मेरी घोड़े दी असवारी है, यही सोने दी काठी है, हे प्रभु जिड़ा मैं तेरे रस्ते नु जान लिया, तेरे मार्ग नु जान लिया। घोड़े पाखर सोयने साखत, बूझण तेरी वाड़, मैं जान लिया तेरा रस्ता की।

0: उसदा रस्ता की है। जपो त एको नामा अवर निरा फल कामा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने तेरा नाम जपना ही तेरे राह ते चलना है, तेरे मार्ग ते चलना है, बाकी सब भटकना है। नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिंगार। नानक के घर केवल नाम। सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने साडे घर विच ते केवल नाम दा ही जप है और कुछ भी नहीं, और यही एक मार्ग है, यही सही मार्ग है, बाकी सारी दी सारी जो है भटकना है। उदे रस्ते नु बुझना की है, उदे नाम नु जपना, और नाम जपन विच पूरा भरोसा होना कि परमात्मा तक पहुंचने का यही मार्ग है, यही रस्ता है। तो साहिब कहंदे ने जिहड़ा तेरे रस्ते नु जान लिया, तेरे वाट नु समझ लिया, बस यही साडे वास्ते घोड़िया दी असवारी है। घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट, तरकस तीर कमान सांग तेग मन गुण धात। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे अनंत गुणा नु जो धारण कर लिया है, यही साडे कोल भत्था है, उस दे तीर ने, यही साडे कोल कमान है, और यही तेग बंद जिस दे तलवार रखी दिए उन्हू कहंदे ने तेग बंद गात्रा। यही साडे कोल ओ गात्रा है, और यही साडे कोल तलवार है, केड़ा जो तेरे गुण साडे कोल ने। ए जो ज्ञान आ गया, ए जो शील आ गया है, ए जो संजम आ गया है, ए जो प्रेम आ गया है, ए जो समदृष्टि आ गई है, ए जो हृदय निर्वैर हो गया है, निर्भय हो गया है, यही ते साडे शस्त्र ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज भी इसका बड़े सुंदर ढंग नाल जिक्र करते ने। आम कहा जाता है अवतारी पुरुषां कोल कुछ ना कुछ शस्त्र रहे ने। मुहम्मद साहब दे हथ दे तलवार सी। अपने देश नू देखिए, श्री राम दे कोल धनुषबाण सी। द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण जी कोल सुदर्शन चक्र सी। किसी तारकिक ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नू कह दिता, तुसी पंजवें गुरु नानक, गुरु नानक दी गद्दी दे वारस, कलयुग दे अवतारी पुरुष, थोड़े कोल कोई शस्त्र नहीं है। तो महाराज कहण लगे है, वेखो गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन छारी, इस आगे टिके ना को विकारी, गुरु पूरे ए गल सारी। साडे कोल गदा है गरीबी दी, विनम्रता दी, निर्माणता दी। साडे कोल खंडा भी है दुधारी, केड़ा जो सारिया दे चरणा दी खाक बन गए, हर एक दे पैरां दे थल्ले हो गए। सानू किसे दे सिर दे उपर बैठण दा शौक नहीं, सानू ते कदमां विच बैठण दा शौक है, सानू ते चरणा दे थल्ले बैठण दा शौक है। चोटी दे धार्मिक मनुख दी चाहत आउंदी है सारिया दे कदमां दे थल्ले बैठना है। चोटी दे राजनीतिक दी एह चाहत आउंदी है कि सारिया दे सिर ते बैठना है। राजनीति सिर ते बैठना है, धर्म नीति कदमां दे जो है बैठना है। तो महाराज कहंदे ने ए जो सारे गुण तेरे प्राप्त हो गए ने, ए साडे कोल शस्त्र ने। और गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने विनम्रता साडे कोल गदा है, सारिया दे चरणा दी जो खाक बन गए ए साडे कोल खंडा है। तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात, वाजा नेजा पत स्यों प्रगट करम तेरा मेरी जात। साडी इज्जत साडी मान मर्यादा साडी जात साडी पात एक ही है तेरी बख्शिश। ए जो तेरी रहमत हो गई है, ए जो तेरी बख्शिश है, तेरी बख्शिश ही साडी जात है, तेरी बख्शिश ही साडी इज्जत है, तेरी बख्शिश ही साडी मान मर्यादा है। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार, होर असवारियां होर मनोरंजन दे साधन। साहिब कहंदे ने हे सियाणे मनुख, सब खुआरियां नू जन्म देंदे ने, सब दुख संताप नू जो है जन्म देंदे ने, मन विकारी हो जांदा है, तन रोगी हो जांदा है। ऐसे मनोरंजना नू एक पासे करना है, ऐसियां असवारियां नू एक पासे करना है। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार।
1: घर मंदर खुशी नाम की, नदर तेरी परवार, हुक्म सोई तुद भावसी, होर आखण बार। ਬਹੁਤ ਅਪਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰੇ ਜਿਤ ਸੁਤ

못하는 걸 원칭이지 말아 하이다. 혹은 Red Bear 이 뭐지고 Sikh Bear 아나 दरअसल सिख का स्वरूप ही तां बनता है जे उस कोल रहनी हो गए रहनी दो तरह की मानसिक ते शरीरक मानसिक रहनी है बाणी का पाठ जपजी साहब जाप साहब सवैये चौपाई आनंद साहब और जितनी बाणी पढ़ सके मूल मंत्र का जप एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या जितना उसको समय ये मानसिक रहत है तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है मन करके सिख बने तन करके सिख बने तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी धरे केस पाहुल बिना देखी मूर्ख सिख तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख रहत नामे इस तरह के बोल ने ज्यों काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो जिवें कोई खोते नु इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे ज्यों काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होय होत जग माही अगरिस्ता करके कोई खोते नु बाजार विच ले आवे लोकी उसनु वड्याण नहीं लगे बल्कि हसन गए उसते भई लै खोते नु इशनान करा के चंदन ला के गले विच फूलां दी माला पवा के लैके आ गया तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है अगां फरमान कर देने तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने मानो खोते नु इशनान कराया गया फूलों की माला पवाई गई है चंदन आदक लाया गया बस खोते ही रख होता है सिर्फ सिर्फ केस ने ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर फरमान निशाने सिखी ई पंज हरफ का जिथे हिरदे दी बनावट बनेगी बाणी नाल मूल मंत्र दे जप नाल गुरमंत्र दे जप नाल उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा इन्हां पंज ककारां नाल कक्का के

अंदर भी रस्ते बने आ रहे वो तो ता ही हो सकता है कि हर वक्त मनुख ने कोई शस्त्र पहने आवे। तो इस तरह तिरपान पहनने दी धारण करने दी सानू ताकीद की दी गई। भाई साहब भाई नंद लाल कहने निशाने सिखें इं पंज हरफ काफ के हर गिज ना बाशद इं पंज माफ कड़ाकार दो काच कंगा बिना बिना केस हेच अस्त इं जुमला निशान। अज दे साइंस युग दे विज्ञानिक युग दे तरक खड़ी होंदी है कि नाखून कटदे हो ये भी प्राकृतिक ने ते की होया अगर केस कटे जा रहे ने की होया अगर केसां दा मुंडन है आखिर नाखूनां दा भी तो मुंडन करदे ही हैं। नाखूनां दा वह हिस्सा कटिया जांदा है जो मुर्दा ने मर चुके ने जिवें घर विच कोई प्राणी मर गया है चलाना कर गया है तो हुण मुर्दे नूं घर विच ते नहीं रखते और घर विच रखांगे तो बदबू घर विच रखांगे तो गलाजत घर विच रखांगे तो सारा घर मरगट बनेगा। इस वास्ते मुर्दे नूं मरगट घाट लै जांदे आ और जला के हक करदे आ। नाखून जो मुर्दा हो जांदे ने मैल नाल भर जांदे ने और बीमारियां दे ओ जन्मदाते बनदे ने। जिंदा नाखून जो मांस दे नाल जुड़े हुए है जिंदा है उसनू कटांगे तो खून निकलेगा उसनू कटांगे तो पीड़ होगी पर जो अगे वध चुके है मैल नाल भर गए है इते मुर्दा है। इस नाखून नू कटना मैल नू कटना है परे सुटना है। प्रकृति ने जब उसनू खत्म कर दिता है मुर्दा कर दिता है तो मुर्दा ते शरीर तो अंग तो एक पासे करना पएगा जैसे घर दे वेड़े तो मुर्दे नू एक पासे करदे आ। हां केस भी कुछ मरदे ने पर सानू किस तरह पता चलेगा केड़े केस मुर्दा हो चुके ने दाड़े दे केड़े वाल मुर्दा हो चुके ने सिर दे केड़े केस मुर्दा हो चुके ने इस साडे हत्थां नू नहीं पता चलदा ये कंगे नू पता चलदा। जैसे जैसे असीं कंगा फेरदे हां मुर्दा केस झड़ जांदे ने निकल जांदे ने। जैसे नाखून रोज वधदे ने रोज नवे केस पैदा होंदे ने और पुराने झड़दे ने। ये केसां दा जन्म ते मरण जीवन भर चलदा रहिंदा है। कुछ ते सियाणे कहिंदे ने कि मुर्दे दे भी केस वधदे ने और नाखून वधदे ने। खैर जो कुछ भी है जो केस मुर्दा ने कंगे दे राही झड़ जांदे ने निकल जांदे ने और जो जिंदा ने ओ सवर जांदे ने सवर जांदे ने। प्रकृति केसां नूं एक सीमा तक रखती है चाहे वह मुखड़े दे ने चाहे वह सिर दे ने। असी देखदे हां जो केसां दा मुंडन करदे ने आखरी दवां तक केस उन्हां दे वधदे ने दाड़ा मुनिया चौथे पंजवें दिन फिर दाड़ा आ गया फिर मुनिया चौथे पंजवें दिन फिर आ गया। लेकिन इस मुंडन नो इस मुंडन नो कोई छोड़ देवे तो दाड़ी एक सीमा ते आके रुक जाती है और जीवन भर उत्थे जो है रुकी रहती है उस तो अगे जो है नहीं जाती। केस भावे नवे जन्म दे रहे ने मुर्दा झड़ते रहते ने लेकिन लंबाई एक सीमा तक ही आखिरी दमा तक जो है रहती है। प्रकृति ने इस तरह नाप तोल के हर एक नु जो है केस दिते हुए ने। केसां दा मुंडन प्रकृति नाल जंग है और इस जंग विच हार ही होंदी है जित नहीं आउंदी क्योंकि आखरी दमा तक केस निकलते रहिंदे ने वधदे रहिंदे ने। जैसे जैसे सिर विच आत्म ज्योति खत्म आउंदी गई नाम अभ्यास खत्म आउंदा गया केसां दी कदर भी घटदी गई। अज भी असी देखते हैं कि रामलीला विच राम पेश करना है स्टेज ते विश्वामित्र नू पेश करना है विशिष्ट जी नू पेश करना है तो जोड़े भी चाहिए ने दाड़ियां भी चाहिए ने और अक्सर बाजार तो नकली जोड़े नकली दाड़ियां खरीद के लिया जाए। असी इस गल का माण कर सकते हैं कि साढ़े सिर ते जोड़ा असली है राम वर्गा
ਸਾਡੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਦਾੜਾ

असली है, विश्वामित्र जैसा, विशिष्ट जैसा, अवतारा दा स्वरूप, ऋषि मुनिया दा स्वरूप, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साड़ी झोली दे च पाया। हां, जद कोई ऋषि होण तो, मुनि होण तो, संत होण तो थले जांदा है, मनुखता तो थले गिरदा है, ते जद थले गिर गया तो फिर हुण केसां दी लोड़ भी नहीं। अज सारी दुनिया दे च केसां दा मुंडन है। थोड़ी जिया कौम जिसनों असी सिख कहिंदे आ, केस इस कोली दिखाई देंदे ने, या कुछ थोड़ा जिया साधु समाज। वैसे बगौर मुताला करिए, मोहम्मद साहब केसाधारी सन, हजरत ईसा केसाधारी सन, और इसे तरीके नाल भारत दे तमाम ऋषि मुनि अवतारी पुरुष केसाधारी सन। और सिर्फ केसाधारी नहीं, बहुत अवतारी पुरुष शस्त्रधारी भी सन, जैसे धनुषबाण श्री राम कोल है, जैसे सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण कोल है, जैसे तलवार मोहम्मद साहब दे जो है हथ दे च है, और इसे तरीके नाल परशुराम कोल कुल्हाड़ा है, बरछा है, हनुमान दे कोल गदा है, गदा विष्णु जी कोल भी है, और इस तरीके नाल असी देखते हैं बहुते अवतारी पुरुष पैगंबरी पुरुष शस्त्रधारी ने केसाधारी ने, जैसे जैसे पैगंबरां नूं अवतारां नूं मनना घटदा गया, उन्हां दा सत्कार सन्मान घटदा गया, क्योंकि जितनी मिकदार विच मनुख दा अहंकार वधदा है उतनी ही मिकदार विच अवतार दा सत्कार घटदा है। ते जिस दे लई कोई सत्कार नहीं रहा, आदर नहीं रहा, उस दे पिछे चलण दी लोड़ की है। हां, कदी कदी नकली राम बन के चलो सामने एक तमाशा कर दिता, नकली जूड़ा सिर ते रख के, नकली दाड़ा मुखड़े ते लगा के इस तरह नकल पेश कर देती, लेकिन ये पेश करना भी इस गल दा सबूत है कि जूड़ा केस इना अवतारी पुरुषां ने धारण कीते हुए सन, और जे इना दी उस जमाने विच लोड़ सी तो अज भी लोड़ है। अगर अज लोड़ नहीं है तो फिर जूड़े तो बिना ही राम पेश करना चाहिए, दाड़े तो बिना विश्वामित्र ते विशिष्ट नो स्टेज ते पेश करना चाहिए है। ऋषि मुनियां दा स्वरूप, पैगंबरां दा स्वरूप, गुरु अवतारां दा स्वरूप धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सानू प्रदान कीता, और प्रदान करके साफ आग दिता, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। जिवें चंगी औलाद मां बाप दे नाम नो रोशन कर दी है, तिवें धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, ए खालसा तेरा जीवन इतना उच्चा है और तू ऐसा संत स्वरूप बने है, तू मैनू चार चंद ला दिते ने, तू मैनू सजा दिता है मान नाल सतगुरु। इथे तक कहते ने, इन ही की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोसे गरीब करोड़ परे हैं। किसी नु शक ना पवे कि खुशामद की जा रही है या गल वधा के आखी जा रही है, तो महाराज कहने, या में रंच न मिथ्या बाकी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी।